कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए।

ही कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे नीति वचन यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ इस सफर में, और इसी के साथ मैं आप सभी को आज की हमारी पहली प्रभातकालीन प्रसारण सभा में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम को आप सभी तक पहुँचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता बीसी शर्मा। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में पेश करेंगे ढेरों जानकारी वर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रोताओं, आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा।

दोस्तों आइए इसी के साथ मैं आपको अभी से लेकर दिन के 12 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में आपको बता दूं। तो 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 को प्रसारित होगा कार्यक्रम भक्ति गीत और 6:40 को आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार। ठीक उसी के बाद 6:45 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

दोस्तों 7:10 को प्रसारित होगा आपातानी भाषा में समाचार, 7:15 को सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट और 7:45 को आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार। ठीक उसी के बाद 7:40 को पेश होगा कार्यक्रम सदाबहार और 8:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

दोस्तों 9 बजे 8:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। ठीक उसी के बाद 9 बजे सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 9:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे उसी के बाद पर प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। और ठीक इसी के बाद 10:10 को आप सुन पाएंगे आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम जो सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz पर है, वो है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।

दोस्तों 11 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 11:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी लहर और ठीक 12 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों ये था अब से लेकर 12 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसी के साथ हमारी पहली प्रसारण सभा भी अंत हो जाएगी।

तो दोस्तों आइए आपको अभी बता दूं कि ठीक कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधा कृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आप सुन रहे थे राम भजन। यह आकाशवाणी ईटानगर गारुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग के हेल्थ प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह सवेरे। तो दोस्तों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो कभी कभी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ फील होती है, गर्दन में हल्का सा स्टिफनेस, हमारे शोल्डर्स का टाइट होना, कमर में खिंचाव या पैरों में थोड़ा सा भारीपन, और फिर हम सोचते हैं बस थोड़ा और सो जाते हैं तो नींद अच्छी आएगी। लेकिन कभी कभी सॉल्यूशन एक और घंटा बेड पर रहना नहीं है बल्कि थोड़ा मूवमेंट करना होता है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी के बारे में जो हम अपने डेली रूटीन में हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं काफी आसानी से, और वो है योगा और स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग और योगा सिर्फ फिटनेस एंथुसियास्ट या एथलीट्स के लिए नहीं है। जेंटल स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट किसी भी एक्टिव लाइफस्टाइल का यूजफुल हिस्सा हो सकता है। ये हमारे मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है और हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट को सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में मदद कर सकता है और फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे शरीर को तैयार कर सकता है। तो आज की सुबह सवेरे में थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग और योगा हमारे शरीर के लिए क्यों यूजफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि स्ट्रेचिंग क्या है। स्ट्रेचिंग का मतलब है शरीर के किसी मसल या मसल के ग्रुप को हमें जेंटली उसे खींचना, जैसे सुबह उठकर अपने हाथों को ऊपर ले जाना और शोल्डर्स को धीरे से रोल करना, हमारी गर्दन को कंफर्टेबली साइड से साइड मूव करना या हमारे पैरों को जेंटली स्ट्रेच करना। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स है लेकिन रेगुलर रूटीन का पार्ट बनाने पर हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल और मोबाइल रखने में मदद कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि स्ट्रेचिंग का मतलब ये नहीं है कि

आपको आपके शरीर को फोर्स करके किसी पोजिशन में ले जाना है। याद रखिए कि जेंटल मूवमेंट ही इज द की। और अगर किसी स्ट्रेच में आपको दर्द हो रहा है तो तुरंत रुक जाइए। शरीर को चैलेंज करना अलग बात है और शरीर को फोर्स करना अलग। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम कार्यक्रम जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये एक प्यारा सा गाना जिसे आप सुनेंगे कश्मीर की कली फिल्म से। इस गीत का नाम है दीवाना हुआ बादल, जिसे आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। म्यूजिक दिया है ओपी नायर ने।

तो दोस्तों इस बेहतरीन गीत के साथ आइए हम फिर से शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे। तो हम बात कर रहे थे योगा की और स्ट्रेचिंग करने के फायदे। तो ये सबको आप एक साथ कैसे देखें? तो सिंपल सा है, अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट और एंड्योरेंस के लिए ये काफी अच्छा रहता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल्स और आपका जो शरीर की जो हड्डियां हैं वो और स्ट्रेंथन हो जाती है। स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी वर्क के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को सपोर्ट करने के लिए योगा इनमें से कुछ एस्पेक्ट को जोड़ के साथ ही बैलेंस के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए फिटनेस को आप सिर्फ एक एक्टिविटी तक सीमित करना जरूरी नहीं है, आप अपने रूटीन में कई अलग अलग फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप एक दिन कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, एक दिन योगा कीजिए और एक दिन वेट लिफ्टिंग वगैरह कीजिए। आजकल लोग अपना काफी टाइम बैठने में ही स्पेंड कर देते हैं। आप ऑफिस के दस्तक पर बैठो, स्कूल पे बैठो या कॉलेज में बैठो, आप ऑनलाइन क्लासेस करो या कंप्यूटर या मोबाइल या ट्रैवलिंग। और जब हम बहुत ही लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर काफी स्टिफ करता है। तो इसलिए एक बहुत सिंपल रूल याद रखिए, हर वक्त परफेक्ट पोस्चर मेंटेन करने की सोल्यूशन नहीं है, आपको पोजीशन चेंज करना भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर बैठिए, फिर उठकर मूव कीजिए, फिर वापस बैठिए। आप अपने डे में छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं, शरीर को मूवमेंट का वैरायटी मिलना काफी यूजफुल है। आपको स्ट्रेचिंग एक घंटे अकेले एक घंटा अलग से निकालना जरूरी नहीं है, आप 5 या 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं सुबह में एक बार, वर्कआउट के बाद, लॉन्ग सिटिंग ब्रेक्स के बीच में या शाम को। इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन 45 मिनट स्ट्रेच करते हैं फिर एक हफ्ते कुछ नहीं करते तो उससे बेटर है कि आप एक रेगुलरली मैनेजेबल अमाउंट का कुछ मूवमेंट करें। फिटनेस में कंसिस्टेंसी ही काफी है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: तो दोस्तों, इस बेहतरीन गीत के साथ आइए फिर से जारी रखते हैं हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग योगा के बारे में, जहां आपको एक वर्कआउट रूटीन आपके डेली के दिन में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए क्या फायदेमंद है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया, आप एक दिन 45 मिनट्स का वर्कआउट करते फिर एक हफ्ते कुछ नहीं करते, तो उससे बेटर है कि आप एक रेगुलरली मैनेजेबल अमाउंट का, थोड़ा थोड़ा अमाउंट का एक्सरसाइज आप करें हर दिन 5 या 10 मिनट, क्योंकि फिटनेस में कंसिस्टेंसी ही काफी जरूरी होती है। और दोस्तों, एक सेफ्टी रिमाइंडर है, अगर स्ट्रेचिंग में पेन को पुश थ्रू करना जरूरी नहीं है, माइल्ड टेंशन या जेंटल पुल और एक्चुअल पेन में काफी फर्क होता है। अगर किसी मूवमेंट से आपको बहुत ही शार्प पेन हुआ, अगर आपका सर चकरा जाए या अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट या कोई इंजरी वाली समस्या हो, तो एक्सरसाइज को आप रोक दें और जरूरत पड़ने पर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस लें। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग जॉइंट मसल या मेडिकल प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल से पूछकर एक्सरसाइज रूटीन चूज करना ही बेहतर रहेगा। और अगर आप बिगिनर हैं, तो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से करेक्ट टेक्निक सीखना यूजफुल हो सकता है। तो आप किसी योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ आपको एक जिम ट्रेनर की भी शायद ज़रूरत पड़ सकती है तब, या तो आप पिलाटेस क्लासेस जा सकते हैं, आप एक महीने वहाँ जाकर सीख लीजिए, फिर उसे छोड़कर आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं। सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले आप कंफर्टेबल पेस पे थोड़ा वॉक कर लीजिए, फिर अपने शोल्डर को जेंटली रोल कीजिए, अपने हाथों को कंफर्टेबली हिलाइए और नेक को स्लोली और जेंटली साइड से साइड मूव कीजिए, बॉडी को साइड में जेंटली स्ट्रेच कीजिए। फिर कुछ इजी योगा मूवमेंट या पोज कर सकते हैं जो आपके लेवल के लिए सूटेबल हो। और हाँ, एंड में कुछ मूवमेंट्स कामली बैठकर आप कुछ अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। और आपको ये रूटीन, सिंपल से रूटीन फॉलो करनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज कोई पनिशमेंट नहीं है। मूवमेंट का मतलब सिर्फ जिम जाना भी नहीं होता है, आप वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। जो कोई एक्टिविटी आपको पसंद लगती है, उसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, तो उसे इंक्लूड करना हर दिन और भी आसान हो जाता है। और जब मूवमेंट एंजॉयबल बन जाता है, तो कंसिस्टेंसी भी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आज की सुबह सवेरे में हमने बात की स्ट्रेचिंग और योगा के बारे में। हमने जाना कि रेगुलर मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। योगा बैलेंस, बॉडी अवेयरनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को सपोर्ट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्टिव लाइफस्टाइल। तो आज चलिए एक छोटी सी हैबिट ट्राई कीजिए, बहुत ही देर तक एक ही पोजीशन में बैठे मत रहिए, बीच बीच में उठकर थोड़ा मूव कीजिए, सुबह जेंटल स्ट्रेचिंग कीजिए और अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनिए। फिटनेस का मतलब सिर्फ ताकतवर होना ही नहीं, फ्लेक्सिबल, मोबाइल, एक्टिव और कंफर्टेबल मूवमेंट का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे लूसी, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हेल्दी रहिए दोस्तों, एक्टिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी कल एक नई हेल्थ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप मूविंग, कीप ब्रीथिंग और सुबह को बनाइए थोड़ा और हेल्दी। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आप पता नहीं भाषा में समाचार।
1: Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and
0: श्रोता कुछ ही पलों में।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गालो कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे अपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।

एजेंसी दैनोबिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ला चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नी अब जे दिगोमी न्यू दिल्ली होका ब्रिक्स समिट मीटिंग दुकु होका जी जिनपिंग का आज हो तालु मोसला मने हला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक पर्सन रणधीर जेसवाल पुसले लान बो अतामी लुकोला मते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी गंडा अन्य का आयासा कोपा गंडा अन्य रूह हिंजे का जे सब तोला लिम्बो मी आइन पाइंदो पा लिकिंदो हला लुकोला मते गवर्नर लिटनर जनरल रिटायर गवर्नर जनरल रिटायर के टी पर्नायक संजय हिमे अतामी दिसामन दुई मुकु द्राग दिको लिम्बो हो इमादो पाका लिम्बो पाक को दिगो हो बूथ अपुर हो का लुकासला हो सभी आखी खिकासला का कंपटीशन में नशा मुक्त भारत अभियान का लिम्बो हो बुजो लोक बावन ईटानगर हो मगला मते हो गवर्नर पार्टिसिपेंट मुबो हिमे अतामी कपाला हो मो लुका हाक्ति के पका मुनुमी कलाला अनो आया मुदो हला असांदलाला लोला मुते अलेंगो हला रोंग रोंगो ने इंजीनियर्स डे अलोमी बुजो ईटानगर का बैंकट हॉल हो सोगला प्रोग्राम कोने मी मुगला मुते हो सका इंजीनियर्स डे अलो सो को हो एजुकेशन लाब आरडब्ल्यूडी का मिनिस्टर पीरी सोनातेरे सोबो हाला मुते हो मिनिस्टर इंजीनियर अताह अरुणाचल प्रदेश ला हो मुनु गंदा का डेवलपमेंट हाता चा को लिम्बो हो अनो ओरोपा मो लुका टेक्निकल एक्सपर्टाइज मी गितोला काम निदो हला असंदलाला लुला मुते होसका प्रोग्राम मी अरुणाचल प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन अता है मुगला मुते ईस्टर्न पुलिस है प्रोजेक्ट मुस्कान का लिम्बो हो म्यू कोने मी स्कूल इन निम हिमे अतु कोने मी का मिताई बिसोला सुरुपा का पिगला का मसामान मुको होपा लातुला मुते हो पुलिस मी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 हो मो का बारो है पोन मला लुकोला मुते हो उमेन पुलिस स्टेशन टीम है गुंताताई का म्योद हो है का मिलबो मी लातुला मुते हो पोक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 4 ला 6 हो केस को ने मला मी रजिस्टर मुते हला हो सीसी मो मी जुडिशियल कस्टडी हो अतला मुतला तर लुकोला मुदो हो पुलिस दल हो के अनावा टीचर्स ला पब्लिक बूथ म्यू अतामी अतो काय हिमे अतामी आया काय कागुरला मुदोपा हो हिलोला का लिली हो पुलिस चितामी तुनुपा लुकोदोपा तोंसरला लुला मुदो अलो लोजा लैंग्वेज है पका हिंदी पकवारा प्रोग्राम मी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पसीघाट हो बुजो अलो हो के मरीगला मुदो होसका प्रोग्राम मी जेएनसी का हिंदी डिपार्टमेंट है भारतीय भाषा मंच ईस्यांग यूनिट अगे हो मीला मुगला मुदो होसका प्रोग्राम मुग को हो हिंदी अगुमी आया चिंग का किन्दुपा स्टूडेंट अतामी पोइम खेकासला ऐसे केकासला हो पोस्टर आया हिला मकास के नीला मकिंदो हला लुकोला मुदो अरुणाचल प्रदेश का टीम है रोम पिन्यन नॉर्थ ईस्ट पेनकेक सिलेट चैंपियनशिप 2026 में अगरतला हो का मकासला मको हो गोल्ड मेडल पेंगो है सिल्वर मेडल पेजालेंगे ब्रॉन्ज मेडल पेजालेंगो है हो खदिनसला हिंखायला पेरने मेडल बाला मते हला लुकोला मुदो हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना में अरुणाचल प्रदेश का टीम कोच सोनम लमराला मो का मलांजा टीम मेंबर्स अतामी अनो ओरो असांदलाला हिंपेपुमी बिकोला मुदो अरुणाचल प्रदेश का पुतु चान मांटुनियर जनवरी ताली इंडिया गंडा होपा माउंट कुनला माउंट नून पुतु पुण्य मिका पुतु चादू म्योदुरोंगे होका चातुजा चापेन उमेन निम्पा जिदो हला लुकोला मुदो होमो माउंट कुन मी जनवरी पुलो का निखाहेला लोकन अलोहो चापेतेला माउंट नून मी नॉन माउंट नून पुतुमी लो अजाम पलेला लोहिन हवापा सेप्टेम्बर पुलो का लोपिन अलोहो चापेला मुते मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर दली होक ईस्ट कमिंग लोअर सुबनसिरी पपुमपारे
सियांग अपर सुबनसिरी।

0: और दिबांग वैली, दिबांग वैली चांगलांग हो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट आतंका ताचेलोयन गंदासको आता हो आनो उरोपा मुदो होला मुने दो हला येलो अलर्ट वार्निंग मी बिकोला मुदो सरोका पुलुको सन हमकने सी आकाशवाणी इटानगर सीसी तनुबिशामी मलिम्बुली कप्योपा तागेरिन्याला अजियातांका मुनु आनेलाका बुस्नेमी तपाकिंदो
1: सीनों में तक सुन पहुँच लोगोली मलारो आया पता लिया तो ला एचआईवी का पुगो मीटिंग तो ला दोनों मलाजा पाया दो
2: एचआईवी आयो के इंसे में दो ये मिलो को इमी दो बस को मेज़ ने ना मिमी वा को मिने ला ला मिवा को मिने हिरान ने नां को इंसे दो ओ अन एचआईवी गुदो को दा इंगामी अनिया सिंको त्रो इंसे दो
1: हो जालो हेंडर गुतो दो बस को अलग अलग से को पोबा सुलियो दुबा तामा सुली हो तारु असु जालो हुको कु इंसे मधु
2: HIV mi test muko kendo. Myo du to rampa chimpa do pa. Po treatment mu do pa. Po sango aya san do pa.
1: HIV mi buso ma pa. Lukas kendo. Test muko kendo. Enne hema la bukima. Sime aya pa kachi nambo. National AIDS Helpline number 1097 ho. Call mu kendo. Sika pugo mi. Public interest ho. Arunachal Pradesh State AIDS Control Society. DHS na alaga noku. Mulimbu do.
3: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आपातानी भाषा में समाचार। आपातानी श्रोता का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर इस छोटे से ब्रेक के बाद।
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: Dynamic.
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके साथ आरजे लूसी। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों आज है 16 सितंबर और हिस्ट्री के पन्नों में 16 सितंबर का एक ये इंटरेस्टिंग डेट है। इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए, नए नेशंस बने, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की डायरेक्शन में भी बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। तो आज हम बात करेंगे 16 सितंबर की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, 16 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर यानी वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन सवाल है कि ओजोन लेयर होती क्या है और इसके लिए एक पूरा इंटरनेशनल डे क्यों है। तो आपको बता दूं कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो धूप से आने वाली कुछ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एक सिग्निफिकेंट पोर्शन तक वो अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर सोचिए ओजोन लेयर डैमेज हो गया तो जमीन तक पहुंचने वाली हार्मफुल यूवी रेज बहुत ही बढ़ सकती है और जो ह्यूमन के हमारे हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए भी वो काफी कंसर्न है और इसी कंसर्न ने कंट्रीज को इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ पुश किया है। तो अब आते हैं 16 सितंबर की सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्टोरी में से एक। 16 सितंबर 1987 को कंट्रीज ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर पर साइन किया था। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस था कि उन केमिकल्स को कंट्रोल करना और उन्हें फेज आउट करना जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बाद 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के मुताबिक इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी जून 1992 में बना और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज डेवलप की गई। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बॉर्डर नहीं देखते। अगर एटमोस्फियर को हमें प्रोटेक्ट करना है तो कंट्रीज सब एक साथ मिलजुल कर काम करेंगी। तो दोस्तों ओजोन लेयर की स्टोरी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देता है हमें। कभी कभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Meneng meneng nga si tegap si gamgo aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Aberitola lako berdungla acin ugumala donang tengnam loke so HIV si nyinga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga berbenu so lema nga pamu madu ber atu boga ayak nga ala ber nichiko hospital lo cek laka. Gam rodu ber mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan loke bimpa linduku.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 MHz यानी 675 KHz पर। तो दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz। मैं हूँ आपके साथ RJ लूसी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सदाबहार में। तो दोस्तों आज है 16 सितंबर। सितंबर का महीना अपने साथ लेकर आता है मॉनसून का आखिरी दौर की नमी। अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ और ग्रीन स्टेट में इस समय मौसम का मूड काफी बादलों से भरा होता है। कभी हल्की बारिश होती है, कई जगहों पर अचानक गरज चमक के साथ तेज और शावर भी देखने को मिल सकता है। आज के फोरकास्ट में भी अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना बनी हुई है। IMD के डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट के मुताबिक पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल है जहां 16 सितंबर को बारिश और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईटानगर कैपिटल रीजन की। तो दोस्तों ईटानगर और आसपास की कैपिटल रीजन में आज मौसम जनरली क्लाउडी से रेनी रहने की संभावना है। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। दिन भर के दौर के साथ कुछ एरियाज में बारिश के स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी आज वो टिपिकल अरुणाचल वाला वेदर हो सकता है जहां आप सुबह घर से निकले तो आसमान पर बादले हो, कुछ देर बाद हल्की बारिश हो और फिर बारिश रुकने के बाद हल्का हवा में ठंडी नमी महसूस हो। तो फोरकास्ट के मुताबिक ईटानगर में 16 सितंबर को बारिश के इंटरवल्स एक्सपेक्टेड है और दिन को मैक्सिमम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है जबकि मिनिमम तापमान आज का 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इसलिए अगर आप सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हो या आप जर्नी कर रहे हो तो अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट साथ में रखना एक अच्छी प्रिकॉशन होगी। और ड्राइवर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है, बारिश के बाद रोड्स गीली हो सकती है, पहाड़ी एरियाज में विजिबिलिटी भी कभी कभी कम हो सकती है, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त स्पीड को कंट्रोल में रखिए, रोड पर ध्यान दीजिए और सडन ब्रेकिंग से बचने की कोशिश कीजिए। मौसम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन हमारी प्रिपरेशन प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। और अब बात करते हैं पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट की। पापुमपारे के लिए भी 16 सितंबर को रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का फोरकास्ट है। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट एरियाज में वेदर कंडीशंस एक जैसे जरूरी नहीं होंगे। कहीं बादल ज्यादा घने होंगे, कहीं हल्की बारिश हो सकती है और कुछ आइसोलेटेड एरियाज में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की भी संभावना हो सकती है। पापुमपारे और ईटानगर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक सिंपल एडवाइस है, अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है तो निकलने से पहले लेटेस्ट लोकल वेदर अपडेट चेक कर सकते हैं या आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। अगर आसमान में अचानक बहुत घने बादल आ जाए और थंडरस्टॉर्म शुरू हो तो अननेसेसरी आउटडोर एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करना बेहतर रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिजली की गरज सुनाई दे तो खुले एरियाज में आप अननेसेसरीली रुकने से बचिए। खास तौर पर बारिश और लाइटनिंग के समय पेड़ के नीचे खड़े रहना सेफ ऑप्शन नहीं माना जाता। तो मौसम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक।

तो दोस्तों आइए अब चलते हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश की वेदर ओवरऑल वेदर रिपोर्ट की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में वेदर कंडीशंस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट काफी डिफरेंट हो सकता है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां ऊंचे पहाड़ है, वैलीज है, फुटहिल्स एरिया तक सब अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए एक ही वक्त में एक डिस्ट्रिक्ट में सनशाइन हो जबकि दूसरे में बारिश हो रही हो, तो 16 सितंबर के फोरकास्ट में भी इसी तरह के वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। आईएमडी के डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट के मुताबिक स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट

रेन और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, जबकि कुछ एरियाज में कंपैरेटिवली थोड़ा सूखा वेदर भी रह सकता है। सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स के कई डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड बारिश और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना बनी हुई है। कुछ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स में बादल और रेनफॉल की एक्टिविटी ट्रैवल कंडीशंस को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए अगर आप अरुणाचल के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस रोड जर्नी प्लान कर रही हैं तो वेदर के साथ साथ रोड कंडीशंस पर भी नजर रखना जरूरी है। तो दोस्तों, बारिश तो अपने साथ एक सूदिंग फीलिंग जरूर लेकर आती है। खिड़की के बाहर गिरती बारिश, ठंडी हवा और बादलों की आवाज मॉर्निंग को एक अलग ही मूड दे देता है। लेकिन जब बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशन रखनी चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो अननेसेसरी बाहर जाने से बचिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और थंडरस्टॉर्म बहुत ही तेज हो जाए तो सेफ लोकेशन पर रुकना बेटर हो सकता है। और ड्राइवर्स प्लीज याद रखिए, गीली रोड का मतलब है ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकती है, इसीलिए गाड़ी की स्पीड कंट्रोल्ड रखिए, हेडलाइट्स का अप्रोप्रिएट यूज कीजिए और आगे चल रहे व्हीकल से आप सफिशियंट डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जल्दी पहुंचने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप घर सेफली पहुंचे। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology.
4: Vani se samachar Prabhat ke saath, main Mukesh Kumar. सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के ओली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी

0: P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से शून्य MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग-अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का नुकसान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
7: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ

0: भर्ती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में छह राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लूसी। तो आज का हमारा टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश के जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा टॉपिक है जो डेवलपमेंट से भी जुड़ा है, इकोनॉमी से भी, एनवायरनमेंट से भी, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले कल से भी। हम अक्सर सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश में देश का पावर हाउस बनने की कैपेसिटी है, लेकिन सवाल ये है कि पावर हाउस बनने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही डेवलपमेंट है, या फिर डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि हम अपने नदियों, जंगलों, पहाड़ों, बायोडायवर्सिटी और लोकल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करते हुए एनर्जी जनरेट करें? आज के हेलो ईटानगर में हम इसी बैलेंस की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पास एक बहुत ही बड़ा नेचुरल एडवांटेज है जो आप सभी को तो पता ही है। स्टेट में बहुत पहाड़ है, ग्लेशियर्स और स्नो फेड रिवर्स है, स्टीप ग्रेडियंट्स हैं और बहुत सारे नदियां और उनके ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी वजह से यहाँ हाइड्रो पावर के लिए इनॉर्मस पोटेंशियल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की असेसमेंट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का आइडेंटिफाइड हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 50,328 मेगावाट, 50,000 मेगावाट से भी ज्यादा। जरा सोचिए, एक स्टेट जिसे हम अपनी नेचुरल ब्यूटी, उसके पहाड़ों, जंगलों और नदियों के लिए जानते हैं, वही स्टेट इंडिया की एनर्जी स्टोरी में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को अक्सर इंडिया के फ्यूचर हाइड्रो पावर के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। पोटेंशियल होना और पोटेंशियल को रिस्पॉन्सिबली यूज करना दोनों अलग चीजें हैं। अरुणाचल प्रदेश के नदियों सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, ये नदियां हमारे जंगलों को सपोर्ट करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ये फिश और एक्वाटिक लाइफ को भी सपोर्ट करता है, ये बहुत सारे गांव और लोकल कम्युनिटीज के डेली लाइफ का हिस्सा है, और अरुणाचल की कल्चरल आइडेंटिटी में भी नदियों और पहाड़ों का स्पेशल ही जगह है। तो जब हम एक नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की ही बात नहीं कर रहे होते, हम एक पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं। इसी वजह से सस्टेनेबल हाइड्रो पावर का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सस्टेनेबल का मतलब है कि आज डेवलपमेंट हो, लेकिन उसकी वजह से कल की जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। अगर आज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि हमारे जंगल, हमारे नदियां और बायोडायवर्सिटी अननेसेसरीली डैमेज ना हो। यही है रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जहां आप सुनेंगे ये बहुत ही बेहतरीन गीत, जिसे सुनेंगे आप किशोर कुमार की आवाज में।

0: तो दोस्तों, इस गीत की बात चलिए जारी रखते हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर, जहां हम बात कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल के बारे में और उसको सस्टेनेबली कैसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, हाइड्रो पावर के अपने तो एडवांटेजेस हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स का रिसोर्स है, पानी के नेचुरल फ्लो का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है और पावर सिस्टम में हाइड्रो पावर की एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट के लिए हाइड्रो पावर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही नहीं, बल्कि रोड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और लोकल इकोनॉमी एक्टिविटी जैसे अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का फायदा तभी मीनिंगफुल होगा जब लोकल कम्युनिटीज को भी उस डेवलपमेंट का बेनिफिट मिले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी एरिया में एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहां के लोकल पीपल को सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना इनफ नहीं है, वो बिल्कुल भी काफी नहीं है। उनकी कंसर्न्स को सुनना चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनके लैंड लाइवलीहुड और कल्चरल कंसर्न्स को सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए। और अगर किसी प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट या लाइवलीहुड चेंजेस होता है तो रिहैबिलिटेशन और कॉम्पेंसेशन ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए। यानी डेवलपमेंट पर सिर्फ मैप नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट ग्राउंड पर लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहिए। तो अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की भी दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है उसका नेचुरल एनवायरनमेंट। स्टेट में घने जंगल है, बहुत ही रेयर प्लांट्स है और बहुत सारे ऑर्किड्स है, वाइल्ड लाइफ है और एक एक्सट्रीमली डाइवर्स इकोसिस्टम है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट को इसके रिच फ्लोरा और फौना, इसके जंगल, नदी और पहाड़ के लिए हाईलाइट करता है। तो जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं तो एनवायरनमेंट असेसमेंट को फॉर्मेलिटी की तरह नहीं देखना चाहिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे कहते हैं EIA, फॉरेस्ट क्लियरेंस, बायोडायवर्सिटी के स्टडीज, डाउनस्ट्रीम के इम्पैक्ट्स और सेडिमेंट मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क असेसमेंट जैसे इश्यूज को प्रोजेक्ट प्लानिंग के सेंटर में होना चाहिए। तो रीसेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी दिखाती है कि अरुणाचल प्रदेश के प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान और फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेसेस जुड़े हुए हैं। ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर रिवर वैली एक जैसे नहीं होती। एक प्रोजेक्ट को किसी एक लोकेशन पर मैनेजेबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही मॉडल दूसरे लोकेशन पर भी सूटेबल हो। अरुणाचल का टेरेन काफी सेंसिटिव है, यहाँ अर्थक्वेक का भी रिस्क है, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन में रखना चाहिए हमें। यहाँ बहुत अधिक बरसात होती है, लैंडस्लाइड्स भी कुछ एरियाज के कंसर्न्स हो सकते हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग डिजाइन के साथ साथ जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल रियालिटीज को भी सीरियसली समझना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। सिंपल भाषा में समझाए तो इसका मतलब ये है कि एक ही रिवर बेसिन में एक के बाद एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो हमें हर प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली सेपरेट करके नहीं देखना चाहिए। हमें पूरी रिवर बेसिन को एक सिस्टम के रूप में देखना होगा कि नदी का फ्लो कैसे चेंज होगा, सेडिमेंट का मूवमेंट कैसा इफेक्ट होगा और यहाँ की मछलियां और एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी पर इम्पैक्ट क्या होगा, डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज पर इफेक्ट क्या होगा, फ्लड और लैंडस्लाइड के रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बेसिन लेवल प्लानिंग सस्टेनेबल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन प्लानिंग बहुत ही केयरफुल करनी होगी। हमें डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट का दुश्मन नहीं समझना चाहिए और एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट का एनिमी भी समझने की जरूरत नहीं है। दोनों को एक साथ लेकर चलना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें अप्रोच बदलनी होगी। पहला पॉइंट है साइंटिफिक प्लानिंग। प्रोजेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल स्टडीज बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है लोकल पार्टिसिपेशन। जिन کمیونٹیز اور ٹرائبس پر پروجیکٹ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ان کی آواز پلاننگ پروسیس میننگ فل ہونی چاہیے اور ان کی آواز کو ہمیں نہیں دبانا چاہیے. تیسرا پوائنٹ ہے انوائرمنٹل سیف گارڈز. فارسٹ لاس کو منیمم کرنا, بایو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا, کیچمنٹ ایریاز کو مینیج کرنا اور افیکٹڈ ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنا بھی کافی امپورٹنٹ ہے. چوتھا پوائنٹ ہے ڈیزاسٹر پریپیئرنس. اروناچل کا سینسیٹیو ٹیرین کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ ڈیزائن میں ایکسٹریم رین فال, لینڈ سلائڈز, ارتھ کوئکس اور ادر نیچرل ہزارڈز کو پراپرلی ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا. اور پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے کہ لانگ ٹرم مانیٹرنگ. پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, الیکٹریسٹی جنریٹ ہونے لگی اور کام ختم, ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. انوائرمنٹ کا مانیٹرنگ پروجیکٹ کے آپریشن کے دوران بھی کنٹینیو کرنی چاہیے. تو دوستو آئیے اسی کے ساتھ آپ ذرا سوچئے کہ میں نے ابھی آپ سب کو کیا بتایا کہ ہم ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کو ساتھ ہی ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں, کہ دونوں کے بیچ بیلنس کیسے بنائے رکھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ سنتے رہیے, سوچتے رہیے صرف ارون ایف ایم 103.1 میگا ہرٹز پر.
1: یہ کہانی ہے ایک گرہنی اور اس کے انترمن کی.
2: بجلی کا بل, کرانا, اسکول فیس, سب ہو گیا.
3: بن گیا بجٹ؟
2: ہاں
3: 5,000 بچ گئے.
2: تو نئی ساڑی لے لے.
3: نا,
2: پچھلے مہینے تو لی تھی.
3: ایک اور
2: نہیں, پہلے بجٹ بناؤ, پھر چھوٹی چھوٹی بچت کو بینک میں سیو کرو اور پیسوں کو بڑھتے دیکھو.
3: بڑھیا,
2: جاؤ بھائی.
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: وتیہ سمجھداری سمردھ ناری.
6: Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
7: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
8: Nishi Youth Association Anya manane ja raha hai Golden Jubilee Celebration 2026 1 October se 15 October 2026 tak Indira Gandhi Park Itanagar mein. Shri Jamru Roja, President Anya cum Organizing Chairman, aur Shri Tai Rajan, General Secretary Anya cum Organizing Secretary, sabhi Nishi bhai behno ko is Golden Jubilee Celebration mein sadar aamantrit karte hain. Anya ke Golden Jubilee Celebration mein sports competition, cultural competition, Nishi Tourism Conclave aur literary competition jaise aakarshak karyakramon ka bhi aayojan hoga. To taiyar ho jaiye Anya ke Golden Jubilee Celebration mein shamil hone ke liye. Dhanyawad.
0: To dosto, aapka fir se swagat hai karyakram Hello Itanagar mein, aur aaj ke Hello Itanagar mein hamari ڈسکشن کا سینٹرل میسج تھا, وہ بہت ہی سمپل تھا کہ اروناچل پردیش کے پاس ہائیڈرو پاور کا انارمس پوٹینشیل ہے. انڈیا کی انرجی نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے یہ اسٹیٹ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, لیکن اروناچل کا فیوچر صرف ڈیم اور پاور ہاؤسز سے ڈیفائن نہیں ہونے چاہیے. اس کا فیوچر اس کے جنگل, ندی, پہاڑ, وائلڈ لائف کمیونٹیز, کلچر اور ینگ جنریشن کی اپرچونیٹیز سے بھی ڈیفائن ہونی چاہیے. اگر ہم ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبلٹی کو ایک ساتھ لے کر چل سکے تو اروناچل پردیش صرف انڈیا کا پاور ہاؤس ہی نہیں بلکہ ریسپانسبل اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایگزامپل بھی بن سکتا ہے. اور شاید اصلی سکسیس وہی ہوگی جب ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہو, ڈیولپمنٹ بھی ہو, امپلائمنٹ بھی ہو, ساتھ ہی وہ اروناچل بھی ہو جسے آج ہم جانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. وہی پہاڑ, وہی ندیاں, وہی جنگل, وہی رچ ڈائیورسٹی اور وہی کمیونٹیز جو اس کے لینڈ کی اصلی طاقت ہے. تو دوستو آج کے ہیلو اٹانگر میں بس اتنا ہی. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے لوسی, اور آپ سن رہے ہیں ارون ایف ایم 103.1 میگا ہرٹس یعنی 103.1 میگا ہرٹس. اپنے تھاٹس آپ ہم تک ضرور پہنچائیے. آپ ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہائیڈرو پاور اروناچل کی فیوچر کا امپورٹنٹ پارٹ ہو سکتا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ ہے, ہم ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ کے بیچ بیٹر بیلنس کیسے بنا سکتے ہیں؟

0: इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम फिर मिलेंगे हमारे कल के एपिसोड ऑफ हेलो ईटानगर पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, अपने अरुणाचल को और बेहतर बनाने की सोच के साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार और जय हिंद।
1: कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बजट,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
7: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

0: आकाशवाणी समाचार गुजरात में शक्ति सिंह। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। ये भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है। चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। IMF के उप प्रबंध निदेशक नाइजल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अमेरिकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमेरिकी सरकारों को देगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसोडेनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The government has clarified that there'll be no charges for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Finance Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. National Payments Corporation of India, NPCI, has announced that a revised UPI merchant discount rate framework will come into effect from 15th of next month. With an aim to provide relief to sugarcane farmers and sugar mills, Maharashtra government has decided to provide soft loans to sugar mills to clear the pending fair and remunerative price FRP dues of farmers for 2025-26 crushing season. The decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis in Mumbai yesterday. Speaking to reporters after the meeting, Mr. Fadnavis said soft loans of over 750 crore rupees will be given to the cooperative sugar mills, enabling them to clear previous dues and procure fresh sugar cane. Delhi government has announced to double the fixed monthly incentive for ASHA workers from 3,000 rupees to 6,000 rupees. The decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi last evening. More on this from our correspondent.
4: The increase in the monthly incentive will benefit over 6,000 ASHA workers working in Delhi. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the increase in the monthly incentive is an important step towards recognizing ASHA workers' contribution and ensuring their financial security. In another decision, Delhi government has decided to build hostels for over 10,000 students studying in colleges and universities across the national capital.
5: The Delhi government has decided to build government hostels for 10,000 students, where their safety, security and economic accommodations needs will be taken care of. These hostels will be built for both girls and boys. Students studying in any university or college will be able to come here and avail hostel facilities.
4: Delhi Chief Minister said that the government will also conduct a survey of colleges that have sufficient space for hostel construction. With Akshat Vaidyan, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
3: The 22nd edition of India-US joint military exercise Yudh Abhyas began yesterday at Auli in Uttarakhand. The opening ceremony of the exercise was held at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand. The exercise is simultaneously being conducted at Auli in Uttarakhand and Mahaj

0: Open Field Firing Range in Rajasthan. The exercise seeks to bolster interoperability among the two forces and address emerging challenges while further strengthening the bilateral defense partnership. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McLay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. Under the agreement, tariffs on about 95% of New Zealand's exports to India will be eliminated or significantly reduced. More than half of the products covered by the deal will become duty-free from the day the agreement enters into force. All Indian goods will receive duty-free access to the New Zealand market. Wellington has also agreed to invest $20 billion in India over the next 15 years. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी ईटानगर का और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल की बात. दोस्तों अगला कार्यक्रम पेश है फिल्मी गपशप, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा
2: शॉपिंग.
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है
4: राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है.
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
6: आई नो ना,
5: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
8: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में. श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं. आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा. तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए. धन्यवाद.
1: श्रोताओ आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और आप सभी का स्वागत है आपके एंटरटेनमेंट फिल्मी सेगमेंट पे जिसका नाम है कार्यक्रम फिल्मी लहर. मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे लूसी और आज हम बात करेंगे फिल्मों की, बॉलीवुड की सिनेमा हॉल्स में चल रही लेटेस्ट मूवीज की और उन शोज और फिल्म्स की जो आप घर बैठे बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं. सितंबर 2026 का महीना एंटरटेनमेंट के मामले में काफी बिजी चल रहा है. सिनेमा हॉल्स में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के इंटरेस्टिंग रिलीजेस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी हर वीकेंड तो कुछ नया देखने को मिल रहा है. तो अगर आप वीकेंड का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं भाई मूवी देखें तो क्या देखें, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आज के फिल्मी लहर आपके लिए लेकर आई है एक प्रॉपर वॉच लिस्ट. तो चलिए शुरू करते हैं सिनेमा हॉल से. तो सितंबर के फर्स्ट हाफ में बॉलीवुड के सबसे बड़े थिएट्रिकल रिलीजेस में से एक रहा है मिर्जापुर द मूवी. मिर्जापुर फ्रेंचाइज ने पहले ओटीटी पर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई और अब इसका बिग स्क्रीन वर्जन ऑडियंस के सामने आ चुका है. पंकज त्रिपाठी और एस कालीन भैया और अली फजल एस गुड्डू पंडित जैसे फेमिलियर चेहरे के साथ फ्रेंचाइज का सिनेमैटिक वर्जन फैंस के लिए नेचुरली एक मेजर अट्रैक्शन बना हुआ है. दिव्येंदु भी मुन्ना भैया के रोल में वापस नजर आ रहे हैं और अगर आप मिर्जापुर के फैन हैं तो ऑब्वियसली ये फिल्म आपकी

0: वॉच लिस्ट में ऑलरेडी होगी, लेकिन अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो फिल्म देखने से पहले मिर्जापुर की कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा फेमिलियर हो जाना यूजफुल रहेगा। और दोस्तों, एक और बिग बॉलीवुड रिलीज है जिसका नाम है हैवान। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल्स में है और फिल्म के डायरेक्टर है प्रियदर्शन। इस फिल्म में एक खास बात यह है कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान का रीयूनियन काफी सालों बाद स्क्रीन पर हुआ है। फिल्म 11 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, तो अगर आपको मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, एक्शन, ड्रामा और बिग स्क्रीन स्टार्स पसंद है तो हैवान भी आपके वीकेंड वॉच लिस्ट में आ सकती है। और ऑनेस्टली, अक्षय कुमार और सैफ अली खान को एक ही फिल्म में देखना अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग रीजन है थिएटर जाने का। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का पहला गीत, जो है तेज धनाधन फिल्म से, और इस गीत का नाम है पैसा पैसा।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है।

आप बॉलीवुड में कुछ रिलेटिवली डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो इस टाइटल पर भी आप नजर डाल सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि सितंबर का सेकेंड हाफ थोड़ा क्वाइट होगा तो नहीं जी, यहाँ पिक्चर अभी बाकी है। 18 सितंबर को थिएटर्स में मल्टीपल इंटरेस्टिंग टाइटल्स आ रहे हैं। सबसे पहले है देरा, ये फिल्म में है करीना कपूर और पृथ्वीराज सुखमरन लीड रोल्स में है और स्टोरी क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के एलिमेंट्स के अराउंड बिल्ड की गई है। यानी अगर आपको सीरियस ड्रामा और क्राइम बेस्ड स्टोरी पसंद है तो देरा इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। और इस वीकेंड एक और हिंदी फिल्म भी रिलीज हो रही है और इस फिल्म का नाम है वाइब। कुणाल खेमू से जुड़ी इस फिल्म को भी सितंबर के थिएट्रिकल लाइन में एक जगह मिली है। तो 18 सितंबर का वीकेंड बॉलीवुड लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक तरफ है दैर्य जैसी क्राइम ड्रामा और दूसरी तरफ है वाइब। आपकी चॉइस डिपेंड करेगी कि आपका मूड किस टाइप का फिल्म का है, सीरियस स्टोरी हो, क्राइम हो, ड्रामा हो या कुछ कंपैरेटिवली लाइटर हो, तो सिनेमा का मेन्यू रेडी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड से थोड़ा ब्रेक लेकर हॉलीवुड का हॉरर देखना चाहते हैं तो एक बड़ा टाइटल भी आ रहा है, नाम है रेसिडेंट ईविल। ये एक पॉपुलर सर्वाइवल हॉरर फ्रेंचाइज है, एक नई चैप्टर के साथ ही वापस आ रहा है। इंडिया में फिल्म 18 सितंबर को रिलीज हो रही है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी ये रिलीज किया जा रहा है। तो फिल्म में है ऑस्टिन एब्राहम्स लीड रोल में और इस फिल्म के डायरेक्टर है जैक क्रेगर। तो हॉरर, सर्वाइवल और हाई टेंशन सिनेमा पसंद करने वाले व्यूअर्स के लिए ये वीकेंड का एक मेजर थिएट्रिकल ऑप्शन है। और इस फिल्म को बिग स्क्रीन पर देखने का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली घर के टीवी स्क्रीन से काफी अलग हो सकता है। बस एक बात है, अगर आप हॉरर फिल्म देखने जा रहे हैं तो थिएटर से बाहर निकलते वक्त अपने दोस्त को अकेला मत छोड़ देना। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम फिल्मी गपशप का अगला गीत।

0: तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, और अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ ओटीटी की दुनिया में। दोस्तों थिएटर का मजा तो अपनी जगह है, लेकिन आजकल एक और सवाल होता है ना, घर पर बैठकर देखें क्या, और इसका सवाल है ओटीटी। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर सितंबर में काफी कुछ आ रहा है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नेटफ्लिक्स पर क्या देखें? तो नेटफ्लिक्स पर सितंबर का लाइनअप काफी वैरिड है। सबसे इंटरेस्टिंग टाइटल्स में से है द रिवोल्यूशनरीज। इस हिस्टोरिकल ड्रामा में रोहित सरफ, प्रतिभा रांदा, भुवन भाम, गुरफति पिरजादा जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। स्टोरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बैकड्रॉप में सेट है और यंग रेवोल्यूशनरीज की जर्नी को एक्सप्लोर करती है। अगर आपको हिस्ट्री, ड्रामा और पीरियड स्टोरीज पसंद है तो द रेवोल्यूशनरी को वॉच लिस्ट में एड किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स पर एक और इंटरेस्टिंग टाइटल है ऑपरेशन सफेद सागर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर। ये एक 6 एपिसोड ड्रामा है जो कारगिल वार के बैकड्रॉप में इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरो स्क्वाड्रोन की स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया है। सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल और अभय वर्मा नजर आ रहे हैं, और अगर आपको मिलिट्री हिस्ट्री और रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड कहानियां पसंद है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। अब चलिए अमेज़न प्राइम वीडियो की तरफ। प्राइम वीडियो पर सितंबर का लाइनअप भी काफी डाइवर्स है। रिसेंट रिलीजेस में घमासान काफी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। इसमें है अरशद वारसी, प्रतीक गांधी लीड रोल्स में है। ये एक इंटेंस डेकेड ड्रामा है, तो अगर आपको क्राइम और सीरियस ड्रामा पसंद है तो घमासान एक ऑप्शन है। और प्राइम वीडियो पर द रनर भी सितंबर में रिलीज हुई है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसमें गाल गडोट और डेमियन लुइस जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। तो बॉलीवुड के बाहर कुछ हॉलीवुड स्टाइल एक्शन देखने का मूड हो तो इस टाइटल को भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसी के साथ चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आप सुनेंगे अभी अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। आपको ले चलती हूँ मैं अर्ली 2000s के नॉस्टैल्जिया पर।
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं,

0: दोस्तों, शायद आपको अर्ली 2000s की नॉस्टैल्जिया पर मैंने आपको पहुंचा दिया तो, लेकिन दोस्तों भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर जारी रहेगा हमारा कार्यक्रम फिल्म ने गपशप, जहां मैं आपको बता दूं कि आप इस वीकेंड ओटीटी पे क्या क्या देख सकते हैं।
1: All New Youth Association Anya Ham Sigo Kunam Unyu Chang Gova Rik Namso Golden Jubilee Celebration 2026 Ham Soka Arnig Frapolga Alo Loken Nantolga Lala Hik La Alo Luru Gola Long Nantol Gova Itanagar Indira Gandhi Park Lo So Nishi Imiglo Alba Sig Gug Chon Gud in Pagnam Amen Ham Jig Rik La Nichiria Pa Gud Nam Alba Chenk Pak Nam Telo Chema Pam Dukuba Imin Loka Lala Hik La Soka Golden Jubilee Celebration 2026 Mana Gata Tukunaba. So Alana event menam sports competition Rikamis Kunam La Nisig Tourism Conclave Menam Cultural Competition or Literary Competition Hum Kay Alabarika Menka Miss Kunam Hum Rig Morkunam Oka Soka Golden Jubilee Celebration 2026 Hum Mana Gak Law Nishi Imik Loka Nichanit Mulne Akum Gala Mana Ming Tuka Hemla Anyaga President Kam Golden Jubilee Celebration 2026 Organizing Chairman Jamru Rujala Anyaga General Secretary Kam Golden Jubilee Celebration 2026 Gam Organizing Secretary Tai Rajan Bunyi Tom Gudukunaba Katakapsa Agoma Herbo.
2: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: तो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, और चलिए बिना रुके बात करते हैं आप क्या देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। तो जियो हॉटस्टार पर सितंबर में मूवीज और शोज का मिक्स देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पर आप हिंदी एंटरटेनमेंट के साथ इंटरनेशनल और रीजनल कंटेंट भी अवेलेबल है, इसलिए अगर आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के बाद कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार का करंट कैटलॉग भी देख सकते हैं। और यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, ओटीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि आपको सिर्फ फ्राइडे का वेट करना नहीं पड़ता, आप अपने मूड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आज जैसे कि आप देख सकते हैं हॉरर, कल देख सकते हैं कॉमेडी, और वीकेंड पर फैमिली ड्रामा, और संडे को बस कुछ लाइट एंटरटेनमेंट। मतलब रिमोट आपके हाथ और डिसीजन भी आपका। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मूवी थिएटर में देखें या ओटीटी पर? मेरा जवाब तो बहुत सिंपल रहेगा, अगर फिल्म का स्केल बड़ा है, एक्शन है, विजुअल स्पेक्टिकल है, या आप किसी फ्रेंचाइज का फैन है, तो थिएटर एक्सपीरियंस वर्थ इट है। लेकिन अगर आपको स्लो ड्रामा, सीरीज, क्राइम स्टोरी या घर पर रिलैक्स करना आप पसंद करते हैं तो ओटीटी आपके लिए परफेक्ट है।

तो थिएटर में आप पॉपकॉर्न का पैकेट भरा हो सकता है, लेकिन ओटीटी में पॉज बटन आपके कंट्रोल में होता है, तो दोनों का अपना अपना चार्म है। तो ओवरऑल देखें साथ ही कि अगर सितंबर 2026 में इंडियन ऑडियंसेस के लिए काफी पैक्ड मंथ है। थिएटर्स में है मिर्जापुर द मूवी, हैवान और उड़ता तीर जैसे हिंदी फिल्में हैं। 18 सितंबर का वीकेंड में दहरा और वाइब आ रहा है, और हॉलीवुड साइड से आ रहा है रेसिडेंट ईविल, हॉरर फैंस के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। ओटीटी पर द रेवोल्यूशनरी, घमासान, ऑपरेशन सफेद सागर और इंटरनेशनल टाइटल्स के साथ ऑप्शंस और भी भरे जाते हैं। यानी अगर आप सिनेमा लवर हैं तो सितंबर में बोर्डम की कोई शॉर्टेज होगी ही नहीं। तो दोस्तों आज की फिल्मी लहर में हमने देखा सितंबर 2026 का एंटरटेनमेंट मेन्यू। थिएटर जाना है या तो आपके पास मिर्जापुर द मूवी, हैवान, उड़ता तीर और अपकमिंग दहरा, वाइब और रेसिडेंट ईविल जैसे ऑप्शंस हैं। घर पर चिल करना हो तो नेट रिमोट उठाइए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर काफी चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगी कल फिर नए अगले एपिसोड में कार्यक्रम फिल्मी लहर का, नए बॉलीवुड अपडेट्स के साथ, नए एंटरटेनमेंट की दुनिया की फ्रेश खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz के साथ। मैं हूं आपके रेडियो साथी RJ लूसी। टेक केयर, आप हमें सुनते रहिए और हाँ, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम अप और मूवी शुरू कीजिए। नमस्कार।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: All Nishi Youth Association Anya manane ja raha hai Golden Jubilee Celebration 2026 1 October se 15 October 2026 tak Indira Gandhi Park Itanagar mein Shri Jamru Roja President Anya cum Organizing Chairman aur Shri Tai Rajan General Secretary Anya cum Organizing Secretary sabhi Nishi bhai behno ko इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। ये कहा

0: दोस्तों आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीक क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। IMF के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहा है। इस दौरान श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैक्काल में भी आज स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 दिन में बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की

0: exports to India will be eliminated or significantly reduced. All Indian goods will receive duty-free access to the New Zealand market. Wellington has also agreed to invest $20 billion in India over the next 15 years. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi today. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. And that is the end of this news bulletin.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों आइए बिना रुके आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। ये है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
2: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट म्यूजिक प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आपको बता दूं कि ये वो कार्यक्रम है जहां आप हमारे प्यारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजते हैं और अपने फेवरेट गाने रिक्वेस्ट करते हैं और हम उन गानों को आप सभी तक पहुंचाते हैं। आपकी रिक्वेस्ट, आपके एसएमएस और आपका प्यार ही इस प्रोग्राम की असली जान है और आप सभी श्रोता के का मैं दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप अपनी फरमाइशों के जरिए रेडियो ऑन डिमांड को चलाए रखते हैं। आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। तो चलिए आज के रेडियो ऑन डिमांड में सुनते हैं आपके पसंद के गाने आपके नाम के साथ आपके अपनों के लिए। तो आज की पहली रिक्वेस्ट आई है हमारे श्रोता की तरफ से जिसका नाम है टेंशन क्रोजी, जो कि लांकासाम विलेज से है, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम से। उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जिसका नाम है मोहब्बत फिल्म से जब जब जब प्यार में। तो आइए टेंशन क्रोजी की फरमाइश पर सुनते हैं उनका ये मनपसंद गीत।

श्वेता, आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें आया है ये रोजमेरी तेरोंगपी जी से, नीलका क्रोपी जी और सरजोंग क्रोपी जी से, जो कि लांगासाम गांव के रहने वाले हैं, कार्बी आंगलोंग असम के। तो उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है और इस गीत का नाम है कह दो एक बार सजना। तो रोजमेरी जी, नीलका जी और सरजांग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आइए आपकी फरमाइश पर आपका मनपसंद गीत पेश है।

दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें आया है देवशीष हजारिका जी से, जो कि माजुली असम के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन गीत की फरमाइश की है। ये है सोनू निगम की आवाज में, आप सुनेंगे साथिया फ्रॉम द मूवी साथिया।

0: श्रोता, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर।
1: माँ, एचआईवी का मतलब क्या है?
2: कहाँ से सीखा है ये सब? ये सब छोटे बच्चे नहीं बोलते।
3: नहीं पूछना गलत है, पूछना चाहिए। यहाँ आओ, मैं बताता हूँ। एचआईवी है एक वायरस जिसके कारण एड्स जैसे और कई अन्य रोग हो सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को ये हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए सही समय में एचआईवी टेस्ट करना होता है जरूरी। आज से तुम भी इन सब बातों को खुल के कहो। अगर हम हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा? याद रखिए, आप भी अपने बच्चों की परवरिश करें अच्छे से, उनके साथ एचआईवी के बारे में बातें करें खुल के। अब हर सरकारी अस्पताल में एचआईवी टेस्ट गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अधिक जानकारी के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
4: अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
3: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं एचआईवी टेस्ट करवाने के लिए।
2: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा एचआईवी टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
4: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश आया है हमें सुनीता बसुमतारी जी, अमूल बसुमतारी, बिमोल बसुमतारी रमेश और लक्की से, जो कि इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, मिले हो तुम, ये है मूवी फीवर से।

तो श्रोता, अगर आप भी सुनीता जी, अमोल जी, बिमोल जी, रमेश और लक्की जी की तरह आप अगर आप अपनी गीत की फरमाइश हमें भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। मैं नंबर बता दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है 9436887808 पर। दोबारा रिपीट कर दो, 9436887808 पर। जी हाँ दोस्तों, आप इसी नंबर पे हमें SMS कर सकते हैं। आप भेजिए आपका मनपसंद गीत और हम आपके लिए हाजिर हैं, हम इस गीत को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें आया है, इस गीत का नाम है आंख मारे, ये फ्रॉम द मूवी तेरे मेरे सपने। और इस गीत की फरमाइश आई है हमें गोप फैमिली से, और इस गीत की श्रोता है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवा गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, जो कि पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड के रहने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे रेगुलर लिसनर्स में से एक हैं। तो आपकी फरमाइश पर चलिए सुनते हैं आपका मनपसंद गीत।

0: दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आइए शुरू करते जारी रखते हैं हमारा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: यूथ एसोसिएशन अन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट अन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी अन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। अन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए अन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी गई।
3: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं एचआईवी टेस्ट करवाने के लिए।
7: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
5: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा एचआईवी टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें? यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
8: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
9: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
10: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: श्रोता, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। मैं हूं आपके साथ इस सफर में अर्जय लूसी, और चलिए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें आया है आउर की गोस्वामी से, जो कि बोकाखाट असम के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बादशाह का ये गीत हमें भेजी है और इस गीत का नाम है जुगनू। तो आउर की गोस्वामी जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो शायद आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये गीत सिर्फ आपके लिए पेश है सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

तो दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड का खूबसूरत बात यह है कि हर गाने के पीछे एक कहानी होती है। किसी ने अपने दोस्त के लिए गाना भेजा हो तो किसी अपने परिवार को याद करते हुए रिक्वेस्ट की है, किसी अपने खास इंसान को डेडिकेट किया है, और कभी कभी कोई गाने सिर्फ इसीलिए रिक्वेस्ट किए जाते हैं क्योंकि उसे सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो अब हम जो गाना बजाने जा रहे हैं वो ऐसे ही एक खास लिसनर की फरमाइश है। तो आप सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगली फरमाइश। ये है रोमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लक्की पात्रो जी ने, जो कि गोलाघाट असम के रहने वाले हैं। तो रमेश, रूनू और लक्की जी, उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। इस गीत का नाम है आज पहली बार। तो चलिए सुनते हैं तीनों की रिक्वेस्ट पर ये गीत।

श्रोता, चलिए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें आया है बिमल बसुमतारी से, जो कि धेमाजी डिस्ट्रिक्ट असम के रहने वाले हैं। उन्होंने फिल्म करण अर्जुन का ये गीत की फरमाइश की है, जो है जय माँ काली। तो आइए बिमल बसुमतारी जी की फरमाइश पर सुनते हैं उनका मनपसंद गीत।

खड़गम चक्रगदेशु चाप परिदं शूलं वशुंडे शिर शंखं कंदकसिंकरैस्त्रिनयनं सर्वांगभूषा।

और दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमें अपने फेवरेट गाने भेजते रहिए और हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे। चाहे आपको रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद हो या ओल्ड क्लासिक।

या बॉलीवुड या सैड सॉन्ग्स, डांस नंबर्स, सोल मेलोडीज, रेडियो ऑन डिमांड पर हर मूड के लिए हर एक गाना जरूरी है। तो आपकी फरमाइश हमारे लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हमारा प्यार है। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें आया है ये इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अपने इस गीत को अपने सारे दोस्तों मिनल, रोमेश, रिकेवेलिक, नारायण महाराज, भाईकॉन और बिमल और हाँ सारे आकाशवाणी अरुण एफएम के स्टाफ मेंबर्स को डेडिकेट किया है। और हाँ, इस गीत के श्रोता है हितेंद्र दास। तो हितेंद्र दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस गीत को हमें डेडिकेट किया है, मुझे डेडिकेट किया है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: Tchotchke.
1: तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। यह है हमें हेमंत गोगोई के नाम से आई है और इस गीत का नाम है तू इस तरह, फ्रॉम द मूवी आप तो ऐसे न थे। और इन्होंने भी इस गीत को डेडिकेट किया है हम सभी आरजेस के लिए। तो हेमंत गोगोई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमें प्यार भेजते रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुनते हैं आपका फेवरेट गीत।

दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारी कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड की आखिरी फरमाइश की ओर। आखिरी फरमाइश हमें आया है चाचा वांगसु जी से, जो कि तिराप डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो चाचा वांगसु जी की फरमाइश में चलिए सुनते हैं भूल भुलैया का ये गीत। और मेरी आप सबसे ये फरमाइश है कि आप अपनी गीत की रिक्वेस्ट मुझे 9:30 बजे से पहले अगर आप भेज दें तो मैं आपके लिए उस गीत को समय पर पेश कर दूंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा वांगसु जी। तो चलिए सुनते हैं आपका मनपसंद गीत।

सर्जरी हुए धोने। आपकी रिक्वेस्ट ही इस कार्यक्रम को खास बनाती है, आपका प्यार ही इसे चलाए रखता है और आपका साथ ही हमें हर बार नए गाने लेकर आने की हिम्मत देता है। मैं एक बार आप सभी श्रोता का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी आप अपनी फरमाइश हमें भेजते रहिए, म्यूजिक से जुड़े रहिए। अभी तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता बीसी शर्मा। मैं थी आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी। और जाने से पहले बता दूं कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा जारी रहेगी और उसके लिए आरजे कविता स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। तो मुझे दीजिए आज्ञा, शुभ दिन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई क्षेत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर। दोस्तों, आज यानी कि 16 सितंबर है और आज के दिन एमएस सुब्बलक्ष्मी का जन्म हुआ था। जी हां, मदुरे तमिलनाडु में एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। वह 1974 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार हैं, जिसमें प्रतिष्ठित पत्र पढ़ा गया है सटीक शुद्धतावादी श्रीमती एम एस सुब्बलक्ष्मी को दक्षिण भारत की कर्नाटक परंपरा में शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गीतों के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में स्वीकार करते हैं। वे पहली भारतीय थी जिन्होंने 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। और आइए अब सुनते हैं इस प्रोग्राम में ये गाना फिल्म मन से उदित नारायण की आवाज में।

0: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे प्रोग्राम फिल्मी लहर। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: That is all for today, listeners. I hope you enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: आप श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज. आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. और उसके बाद हम लौटेंगे 12:10 पर प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के साथ. तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं. मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें. ₹2,000 से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी. वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी. अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
4: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी. श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा. प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई.
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है. इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है. थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है. यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है. न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है. इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है. एक रिपोर्ट.
5: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया. विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े. न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा. इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा. इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे. समाचार कक्ष से अमीशा.
2: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ. सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी. प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है. ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं. ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है. संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं. भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariff and expanded trade between two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The 22nd edition of India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas kicked off at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand yesterday with contingents of 600 personnel each from the two countries participating. The exercise is simultaneously being conducted at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan also. Here's a report.
7: The exercise aims to enhance capabilities of both armies to conduct joint military operations in mountainous and semi-mountainous area with special emphasis on infantry-based operations. During the exercise, the two armies will exchange operational methods and strengthen joint planning and operations. The training will include the use of drones and autonomous system for surveillance and reconnaissance. Modern weapon system will also be demonstrated at the Mahajan Field Firing Range. Experts from both armies will exchange views on emerging technologies and developments related to multi-domain warfare.
6: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day official visit to Bhutan from today. He will hold bilateral talks with Foreign Minister of Bhutan, Leonpo Dien Dungyel. The External Affairs Minister will receive a royal audience with the King of Bhutan and call on the Prime Minister of Bhutan. The Ministry of External Affairs said the visit continues the tradition of regular high-level exchanges and to further strengthen the close ties of friendship and cooperation between India and Bhutan. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of September. During his three-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Nikolaevich Mordovichev, on issues of mutual interest, including professional military cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honor and pay tribute to fallen soldiers at the tomb of the unknown soldier in Moscow. Saudi Arabia has said that its air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone near Makkah last evening. The spokesperson for the Coalition Forces to Support Legitimacy in Yemen, Major General Turki Al-Maliki, described the incident as the second attempted Houthi attack on Makkah, referring to an earlier ballistic missile incident in 2017. He also warned that the Saudi-led coalition would take necessary measures against further attacks. Meanwhile, the Houthis have denied targeting Makkah. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the forenoon session today. The Sensex rose 331 points to 74,335, while Nifty added 117 points to 23,235 when reports last came in. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi today. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz में। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का। इस प्रोग्राम में आइए सुनते हैं ये पहला गाना पंकज उदास की आवाज में। जी हां, उनका ये जो गाना है वो है एल्बम स्टोलन मोमेंट का एक हिस्सा है। आइए सुनते हैं उनकी बेहद ही खूबसूरत आवाज में ये गाना।

उस्ताद सुल्तान खां एवं श्रेया घोषाल की आवाज में आइए सुनते हैं ये गाना एल्बम उस्ताद एंड द डिवास से।

0: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। और अगर हम बात करें इंडियन पॉप म्यूजिक की, तो अलिशा चिन्नय जी का हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, उनका एल्बम का ये गाना मेड इन इंडिया, आइए सुनते हैं।

0: कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
1: आइए आप सुनते हैं लकी अली के आवाज में ये रेट्रो 90s का इंडी पॉप।

दोस्तों, इसी के साथ ही नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के इस प्रोग्राम से समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने

0: कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Lalima Aneja Dang. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, that is P2P, UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that Merchant Discount Rate MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's Parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high quality trade deal is expected to enter into force later this year.

0: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं 60 से लेके 80 के दशकों के कुछ बेहतरीन गाने, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए सुनते हैं ये गाना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ से।

कृषि यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में जब जब फूल खिले का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, और आइए आगे सुनते हैं जीने की राह फिल्म से ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

ये आगे सुनते हैं ये गाना जिसे फिल्माया गया है जितेंद्र और मुमताज पर, बेहद ही रोमांटिक गाना है, आवाज है सुमन और मोहम्मद रफी की।

0: आई है पसम, नींद कैसे आए मन के द्वार पे सनम।
1: श्रोता दोस्तों, इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक को यहीं समेटते हैं। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोते दोस्तों, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ, जो बीत गया सो बीत गया, पर जो आने वाला है वो आपके हाथ में है। तो उस आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करते रहिए और हमारे साथ

बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz में, और आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। तो लीजिए पहला गाना, आइए सुनते हैं किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कामचोर से।

आप सुन रहे हैं ये गाना फिल्म घर से, फिर वही रात है ख्वाब की, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत आर डी बर्मन का है और गीत को लिखा था गुलजार ने।

0: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।
1: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हां, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष, और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
2: दिल से दिल तक बात पहुंचे, मिलते मिलते सनम, ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और
5: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units, leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog. Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it intercepted Houthi drone near Makkah, warns of measures against further attacks. Houthis deny targeting the city. And forecast of heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab, Delhi and some parts of Northeast today. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has stressed that tax-related proposals to the government must keep the nation first over and above seeking rate reduction, exemption or concessions. She was speaking at the inaugural of 2 days conference on New Age Taxation organized by the International Tax Research and Analysis Foundation in Bengaluru today. The minister called upon the academics, researchers and think tanks to make independent tax policy research a regular part of public discourse that can be examined, challenged and improved.
6: The question should not only be what should my sector get in this year's budget, but the larger question should be what kind of a tax system should India have over the next 2 decades as we move towards Viksit Bharat 2047. That requires better tax policy research and wherever possible offers a workable alternative. For decades, reforms in India,

0: में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दविचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी

0: एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200

डॉक्टर एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया, जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड न्यूज और दोपहर समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s। और हिट्स ऑफ 90s में आज आइए पहला गाना सुनते हैं फिल्म हेलो ब्रदर से। आवाज है अलका याग्निक एवं कुमार सानू की।
1: सब्सक्राइब

0: subscribe कीजिए।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s और अगला गाना जो आप सुनने जा रहे हैं वो है फिल्म दीवाना का। जी हाँ, ये फिल्म बनी थी 1992 में। ये रोमांटिक फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर ने किया था। लीड रोल्स पर ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान थे। ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी और वो फिल्म के दूसरे भाग में ही दिखाई देते हैं। दिल आशनाए शाहरुख खान की पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन दीवाना को पहले जून 1992 को रिलीज किया गया, इसीलिए ये उनकी पहली फिल्म हुई। ये फिल्म 1992 की

0: आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
1: श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में और आइए अब सुनते हैं 1952 में की बनी ये फिल्म सातवां आसमां का ये गाना। इस फिल्म में विवेक मुशरान और पूजा भट्ट लीड रोल्स पे हैं और इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया है और इस गाने को आप सुन पाएंगे उदित नारायण एवं लता मंगेशकर की आवाज में।

0: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s और समय हो चला है प्रोग्राम से वाइंड अप करने का। और आप हमारे साथ सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी देर में यानी कि ठीक 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके बाद आप सुन पाएंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और उसके बाद आप सुन पाएंगे ताय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:30 पर हम लौटेंगे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।
0: देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते।
5: दिस इज मॉर्गन बागरा विथ टुडेज न्यूज हेडलाइंस।

चल हेल्पलाइन नंबर 1098 ही मदद चेक दखाया था उम्र का मदद था न फ्राई पुलिस का इंटरवेंट करने का एक्शन ला कर दखाया था उन मैसेज था न फ्राई डब्ल्यू सी डी डिपार्टमेंट डब्ल्यू पी एस टीम का अमूम पन्यांग तुआ का एक्यूज विषयों का दखाया था उम्र का केस ने रजिस्टर कर गता प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 गुंग लग एक्यूज वन जुडिशियल कस्टडी हिसन का दौर दिखाया था उन उड़ा का ईस्ट यंग पुलिस का पेरेंट्स टीचर्स कम्युनिटी चौंसन विना शरा ने थोलत नत समा हित थोंग दो न्यान हित का एक दौर दिखाया था उन उड़ा का क्या मुकलेन निन फा हिंदी पकवारा सेलिब्रेशन तान का दौर दिखाया था उन जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट है बाइंग इन वाई हिंदी लाइव कंडक्ट उतरा फी उड़ा का प्रोग्राम वन हिंदी डिपार्टमेंट जे एन सी पासीघाट का भारतीय भाषा मंच ईस्ट यंग यूनिट नंग रोने का कन ऑर्गेनाइज कन कता दखाया था उमन हिंदी दिवस मंगलक वलंग लिटरेरी पोएट्री रिसाइटेशन इसे राइटिंग उरा का पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था मत दखाया था उमन स्टूडेंट्स अन भी हिंदी ही इनकरेज करे उरा का मॉन्टेनियर जनवरी ताली वन इंडिया फा नन्या पांग एक मेथ सामना दखाया था उमन मोन कुन नंग मोन नुन ही सीजन मनारत समिन का थे तली का मोन नून वन लद्दाख है समिन कन का दखाया था उन तुम्हें लाए तरिक बिंदन और का मोन कुन वन या तंग लाए तरिक तलमोन नन कन का दखाया था उन अन अरुणाचल प्रदेश माउंटेनियरिंग का टैक्स लाए दखाया था उन और का मेंस क्रिकेट ही इंडिया का अफगानिस्तान पे का दखाया था विकेट नन का सेकेंड टी ट्वेंटी इंटरनेशनल ही अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली लग और का फाइनल मैच वन त्रवा समान दखाया था उन वन गोल लग दा और का मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर का येलो अलर्ट इशू कन का दखाया था वेस्ट कमिंग लोअर सुबनसिरी पपुम परे सी योमी ईस्ट यांग लोअर दिबांग वैली अंजाव डिस्ट्रिक्ट अंसान कांग अनगुंग क्रम वांग नाव कमांग रा तम वांग ब्रे मन दखाया था उन रा गन छाव मन कमान किंग लाइकों संग फाय मन तो कमान दलीना तमाय का स्टेरिंग जाय मतम सन ग्या जे

नै आकाशवाणी ईटानगर बिरगरमाय मुचलांग खामते खामति हौ कोमा हो मनै वन बुग्धु लाखनी पिताय सोंहिंग पा साउतु सक्रेट पिमंग हिंग सम्पा पेत्सप्तु सासना सोंहिंग हापा चत्सप्तु इंगनाची पिमंग सोंहिंग साउहुतु नून सेप्टेम्बर नै सबहु वन खौखाम लुक चौतान से नमसो मै हनै थोम खाता वन महोक न्यू दिल्ली माय सफांग फिफ्थ एडिशन अन सेमिकॉन इंडिया 2026 नै चफु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ओपत हुमा याओ सफांग साम वन नै माय कुन पिंग्या तांग चांग अन सेमीकंडक्टर अन इलेक्ट्रॉनिक्स खाउ तक होम तुम कन खन साम कुन हित लोंका मा खाई खाउ को तक मा लुक कुपा कुना मुंग कांग माय तक मा याओ सफांग सेमिकॉन इंडिया नै इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खाउ लुइतंग SEMI सेमी खाउसी औतंग नमहो डिप्टी स्पीकर एंड अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली चिवा कार्डो नियोर लोइटांग कुन लोंग पार्लियामेंट खाउसी सफांग 69th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस अन्याने कोपा केप टाउन मुंग साउथ अफ्रीका माय वन मंगा औतंग कने माय कहुम नंग कयाओ सफांग माय मुंग हासेप हु अन हुम नंग कन याओ कॉन्फ्रेंस नै माय पोंगलोय पार्लियामेंट्री ngai डेमोक्रेटिक इश्यूज माय तक तानवा कन खनसम सफांग नै नून सेप्टेम्बर नै सेप कवन माय तक औसत याओกับเจ้าปงลวยราคากันดรักโอ้กันสู้มาเศร้าสิสเตทกัฟเวอร์เนอร์เลฟเทนเนนต์เจเนอเรลรีทายร์ชื่อว่าเกติปรนัยลองคอนดักออฟดิคลามิชันไงเพนติ้งคอมเพติชันเอาตังกายาวลองไหนเตอร์นาซามุกบารัตอภิยานไหมเนอร์โลกบาวันอิตาเนกันไหมวันมังอาเอากูกายาวกัฟเวอร์เนอร์มันเจ้าตั้งพาร์ติซิเพนส์เขาตานว่ากันกายาวMinistry for Education and Rural Works, Minister for Education and Rural Works, Chiwa, PD Sona, Wa, Engineers Khao Kanpa Au Khantanu Arunachal Pradesh Ngai, Kanpa Au Khantanu Mung India Mai Tang Choi, Harkan Sunam, Long Nai, Man Chau Muyan, Kanang Saphang 59th Engineer Day Celebration 2026,

0: नियानल बैंकेट हॉल ईटानगर में वन मंगावा कयाओ सेलिब्रेशन नाय अरुणाचल प्रदेश इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन खाओ मध्यम सर मुक्सा गंदम विश्व वराया अन पपी भारत रत्नासी प्युया औतंग कयाओ तरा अनलंग तोंग मा इस्यांग मै लखा ओन कुलंग मै कुन हिम हुन मै उ कुलंग लौ ह मकवान सी औलु नाता कयाओ फिपिचाय लखा ओन नै मनचौको लखा अनसोन ले तोंग मा पोंगलोय नै सी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 मै तोय सी लुक्सु मै लौ तोंग कयाओ खाम नै तोंग कुलोय WPS टीम त इंस्पेक्टर चुवा अमुम पायंग मै कासी कुन नै मै सेवसे थोंग कयाओ खनसम त सेक्शन 4-6 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 मै त्रा खत कयाओ हो वन मंगा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज मै सफांग सिप हावन हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेशन नै मूड कयाओ प्रोग्राम ने हिंदी डिपार्टमेंट जेएनसी पासीघाट खाओ लोईतांग भारतीय भाषा मंच इस्यांग यूनिट खाओ लोई हुम लोई कंसी औतंग कयाओ तोलियन मेंस क्रिकेट में इंडिया खाओ अफगानिस्तान खाओ में लुक चीट विकेट औहाय कयाओ थर्ड खन सम फाइनल मैच अन सीरीज नए अरुण जेटली स्टेडियम निया दिल्ली में वन महोक तक अवतुलियन मानम हो मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर खाओ चाहंग चिला वेस्ट कमिंग लोअर सुबनसरी पापुम परे सी यूमी ईस्ट सियांग लोअर दिवांग वैली गए चाहंग चिला अंजाव खाओ येलो अलर्ट इशू कयाओ चेला ने खाओ मै फाते फानंग फुन फुन लुम लुम तक यंग नसी मान कयो हो चाहंग मने खाओ खाम तु खे नम हो खाम अन लेंग अन लंग हने थोम खाता
1: नो एजाईबी मै अनचो नै टोंग संग ये हंग कम हंग केंग तु पचो मै तंग मोद मै अन यु सा नम हो एजाईबी लुट फी मौ कम मौ केंग सी होम नोन खिम खिम सय या हन गौ लुक मे लुक मै चंग फी नम हो तकन सी मत्ता होम नंग होम किन वाम कन तु कन कोट कन चा लंग युंग काप ये एजाईबी नै मौ फी नम हो एजाईबी मै कचि औलेम ता आखिंग मै टोंग ये सुया सुवान सी उनी खेमसा असा याव सी निपसु पिन पेयो एजाईबी मै पकोटा अनटोंग औनम ता कचि कपेटा अनटिया कोन कोनी कोनमनी औहाइदा नमसी खाटोंग ये नेशनल एड्स हेल्पलाइन उलंगलोम कौचित मै कॉल हिटा अनाय पोइमा नु पब्लिक इंटरेस्ट लोक अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DSS नहा लोगों नम्मा

0: सेट किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार अपराह्न के 3:30 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है
1: न एजाई बी मई अंचल नई टोंग संग ये हंग कम हंग क्यांग टू पचाओ मई तंग मोट मई अंजय सा नम हो एजाई बी लुटी मऊ कम मऊ क्यांग सी होम नॉन खेम खेम सर या हन गौ लुक मे लुक मई चंगे नम हो तकन सी मट्टा होम नंग होम किन वाम कन तु कन कोट कन चा लंग यूंग काब ये इजाई बी नई मऊ फी नम हो इजाई बी मई कची औम ता आखिंग मई टोंग ये शु या शु वन सी उन्नी हेमसा असा याव सी निपसु पिन कयो इजाई बी मई पकोटा अंटोंग औ नम ता कची कपे दा अंत्या कोन कोनी कोन मनी औ हाय दा नम सी खाटोंग ये नेशनल एड्स हेल्पलाइन लुंगलोम कौचित मई कॉल हिटा अनाय पोयमा नु पब्लिक इंटरेस्ट लोक अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DSS नहालोगन नमो
2: आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय है हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों का। बॉलीवुड अपडेट में आइए चलते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर और देखते हैं क्या कुछ है बॉलीवुड की दुनिया की खबरें। हनुमान अंश फिल्म के निर्माता अनुप्रिया नागर ने कैंची धाम जाकर बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लिया। फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता से वे काफी खुश हैं। मूवी मसाला में आज बात होगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर्स सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हैवान की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की। साथ ही देखिए आप नयनतारा की नई फिल्म महाशक्ति का जबरदस्त टीजर। इस खबर को आप देख सकते हैं बॉलीवुड सेगमेंट में आज तक में। शादीशुदा मर्दों से अफेयर करने वाली महिलाओं को तनिषा मुखर्जी ने कॉल आउट किया है। सोशल मीडिया पर दिए अपने विवादित बयान में उन्होंने साफ कहा कि ऐसी महिलाएं फेमिनिस्ट नहीं बल्कि महिलाओं की ही सबसे बड़ी दुश्मन।

सोहेल खान के गणपति बप्पा को बीती रात विसर्जित किया गया। इस मौके पर पूरा खान परिवार मौजूद था। सलमान ने बप्पा की आरती की, लेकिन उनकी एक गलती पर बहन अर्पिता ने उन्हें टोका। दिशा पटानी को ऑनलाइन जिस लुक के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, उन्होंने वही लुक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। इन तस्वीरों में वो बेहद खूबसूरत दिखी। उन्हें देख लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे। दिलजीत दोसांझ ने अपने लाइव सेशन के दौरान बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की तारीफों के कसीदे पढ़े। सिंगर ने उन्हें लेजेंड बुलाते हुए उनकी लेगेसी का सहारा। दिलजीत के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर गोविंदा भी खुश हुए।

अदनान सामी की आवाज में आप सुन रहे थे शिलाम इसका ये गाना। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी टनल के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार।

इज आकाशवाणी इटानगर अनि सेप्टेम्बर लेट मनी बना रॉक तारीख बुधवार इरुमा के वांचो साय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई यामी खमे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए गानी न्यू दिल्ली तो थम गाले के सेमिकॉन इंडिया 2026 का दापे हाया कॉन्फ्रेंस हलेनी रम थाले वंटाई सत मोटो दौले मोकांग मी बोमा होरन होरन होंजे अलाय अंगमी थामान पकमा ले Global semiconductor here, electronics ecosystem rong ma le du jai. Semicon India came desma Ministry of Electronics and Technology here. Semi ni ka angke India Semiconductor Mission A atu aja angke Semiconductor Conference and tole exhibition le akho ke jo chang le. Arunachal Pradesh Legislative Assembly Deputy Speaker Cardo Nyukjor Mani Horoi Parliamentarian Stampai Tamle South Africa Anke Cape Town Ma Thampuram Aku Leke Commonwealth Parliamentary Conference CPC Tu So Takle Haja Conference To Commonwealth Parliamentary Conference Kam Election Omla Le Commonwealth Des Puniban Arok Toke Yau Hakle Higher conference ma parliamentary heya democratic zaika mali mali ba ma arong onke boma higher to so September banakuto asuka kengai. Governor Lieutenant General Rita Keti Parnai ke state ma tok nga kali sa la le sat ke pai awa le mok ngo ke campaign pa ke ang le mani itanakaran ka log bhavan ma Nasha Muk Bharat Abhiyan ka ma declamation heya painting competition na tu ja le. Hale charan sanran nausam e tok nga kali sa la ke e khanak to tempang le pote poi le chu na ting la an to le hale ke chila chisa ke ting ha ang ringang le chu na te bak le tu ja le governor e haja ma hak ke tham bai sai tik ka tik le wan re ke bo ma hale society mot to na hai le moksa ang le hak ke kho ma chu a chok le Governor Haleke Tu Yamakang E Tatali Bama Vanre Ang Chu Rong Chu Dong Pulvanke Boma Kapakase Bupe Ma Kanak Nuto Poke Motli Satli Bama Ayang Bakeli Chokale Education here Rural Works Minister PD Sona E Engineers Tam E Hom Honje here Technical Motli Satli Ma Bama Singman Ke Makang Ele Arunachal Pradesh and Ole Despan Amai Angle खतलवै आरोंग लंगोतै पुलुवनले सोनाय ले मनि इटानगर अंके बैंक्वेट हॉल मा थामपुनि बन अकु लेके इंजीनियर्स डे टू सो तो हक मा वनले के हया टू सो हान पंग मा इंजीनियरिंग खा अंके बु पांगनु तो वै फुमलमले हया टू सो अरुणाचल प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन चिमा खांग ए इंडिया मा इंजीनियर्स थाम खा मा खा खा के मिहक यौ चंगके भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय पुकेनी ले आखा आखन ले अतु जाके चंके प्रोजेक्ट मुस्कान खामा एशियन पुलिस ताता निंके सिंगन टुटाए अपोंके मा मोटो ना हाई कॉलेज स्कूल नाउ संबु आंग होनपो जेनो ले को आंग ले केतु सो अतु जाले इबा एचु तमरी खनक ए नाउसाता

वांचो श्रोताओं का समाचार। वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय है हमारे प्रोग्राम हिंदी फिल्मी गानों का। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का ये पहला गाना वास्तव फिल्म से सोनू निगम एवं कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

आप सुन रहे थे जिसमें फिल्म का ये गाना के आवाज में। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे इदुमिस में श्रोताओं का समाचार।

0: वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईद उल मिस में कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ईटानगर सेलापुची जिहोलाहरो लिउलिनी एतानिची ईद उल मिस में आहोला कीजिए दरगालंबो अनाया मैं दिल्ली माचे यशोभूमि मने असुनी के बने ऐतानो के बाद सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस अखपगम बा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में आये पहे बावदा ला होगा आ कॉन्फ्रेंस है अधिकाची सेमीकंडक्टर जो चुची पोहाची जगह चा इलेक्ट्रॉनिक्स और ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को कोचे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में आखने गए बावदा ला होगा बुनी साउथ अफ्रीका माचे केप टाउन अधिको ने मगरहु ताहो कॉमनवेल्थ अतिमाची पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस आखगा माम खिम ब्यावचा अरुणाचल प्रदेश डिप्टी स्पीकर कार्दो निक्योर में आ अतिको खिमु बदा ला होगा माहौम आ कॉन्फ्रेंस दो ने इलेक्शन है अब अचला पुची जिहु खिनी माची नेलीबा आखगा उदा ला होगा अतिका माने आई मुगा अंजुंगा बा अनुए कैंपिंग कोकोमाने बुनी अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनायक में ईटानगर ची लॉक भवन मने डिक्लेमेशन लामागा दोने पेंटिंग छुमागा प्रोग्राम अखाने का चिदा आहोगा आयु अनब्रो आयु मुगा आंजी ची पो अलाजी उचा अनि प्रोग्राम अखाने का चिदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश दोने इंडिया तिका ची डेवलपमेंट जोता इंजीनियर अनब्रो ची पेंदो आतो खिगा दा ने अरुणाचल प्रदेश आर डब्ल्यू डी मिनिस्टर पी डी सोना में पुनी ईटानगर ची बैंकॉट हॉल मने गुमगा रू खिनी लेना बा इंजीनियर्स दे इनि एनागा मा चिचा बमहो लाय बदा आहोगा आ एना है भारत रत्न सर मक्षागुम दाम आला इनि मा चिनि अरुणाचल प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन में अखनेगा दा आहोगा पासीघाट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज मा चे हिंदी डिपार्टमेंट में होलोमा निगे बने बुनि हिंदी पखवाड़ा अखपगम बमा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट मा चे भारतीय भाषा मंच हाउ में आरोगा दा आहोगा आ मुहे हो बुनी निगा इंडिया टिका एम मा हिंदी दिवस इनी एनागा ही बचे अरुणाचल प्रदेश मा चे जनवरी ताली में एलाकानी कोकोमा हो एंडी यूकानी शोपाएगा इंडिया मा चे याकु हैंडो शाही बदा आहोगा आ में अहा अचला पुची जनवरी हो मा चे नी लादाख मा चे एजाइन बेवाने यूहो यू मीटर यू माउंट कुन एंडिपु सुतेपा अहा एचला पुची हियु माचिनी लद्दाख माचिनाली एचरमे वने मावासुरु मगा मीटर इरु नुन एलिपु सुत्या बाचिदा आहोगा इस्यांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट माचे याकुआ इचिखियागे रोहेगा मगाहुमो कापिनु मिचिमुगे वुमेन दोने चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोकोमाचिको आरोगागेने इस्यांग पुलिस में आया प्रोजेक्ट मुस्कान कोकोमाने अपिगा नंबर मा कोने गने लाके ने रोटिगा लता ला होगा इनुगी याकु अच्छी नाबा लिया ची आमे के जीरो किन्हीं यो नंबर माने आ दुंगे को बे लाके ये पा डब्ल्यूपीएस टीम चीने का लेस इंस्पेक्टर अमन पंडियन दोने किसा पुलिस आलम पर में आशुगे मुहे पोक्सो एक अच्छो को माने रोटिगा लता ला होगा एबे आप में दिल्ली में ची अरुण जेटली स्टेडियम मने

0: इंडिया ने अफगानिस्तान एवगा T20 क्रिकेट मैच अखगा मा इंडिया ने यू विकेट माने आने गने कासो मैच सीरीज मचे कानी मैच आने तगा बमा हो इमतान दोची मैच बु अनाया आ स्टेडियम माने अखगा उदा ला होगा अबुने ने अरुणाचल प्रदेश मचे वेस्ट कमिंग लोअर सुबनसिरी पपुम पड़े सी योमी ईस्यांग लोअर दिबांग वैली दिबांग वैली दो ने अंजाव डिस्ट्रिक्ट मा आयोशदा ने ईटानगर मीटोरोलॉजिकल सेंटर मच में ला होगा ने आ डिस्ट्रिक्ट मा मची आतिका ब्राग मा नाप्रा आयो ब्रुनो आरुन्या मया दो ने अबुलिच योशदा ला होगा नेतानिची ईद मिश्मी आहो अलिमाओ दबाए
1: HAVNB चिपो आसवे आउ HAVNB चिपो आसवे आउ दा खागा
2: HIV हम बे है HIV गिला मिंग ची इयो घर दोगा गे कांडो ने जी दोगा गे HIV हम बे गिला इंजेक्शन था पो बीजी ची था दोगा गे मने HIV की अल्ल ओदा HIV हम बे गिला नानी में आ आगे मने कह दोगा ही
1: HIV हम बे है जापा जी गे आँखों में गे जापा हाथों गे आय ओदा ने आरंडो में थोबा मने HIV हम बे की गुमी
2: अलि ने HIV हेम्बे गई चिंगा तमको अथुसु अरुंदा खागा हेम्बे गई ओबो चमा असागा गई गो अब एंगो याबु इजिगा अथु चितोगा हिव HIV हेम्बे इजी मी कबा असागा लाजिजी तमको अगुतेने अथुसु जी इचा HIV हेम्बे चिप्रोमा इचिबु असाओदा ओगाई बुया है नेशनल एड्स हेल्पलाइन ची नंबर खगे जीरो खिनी उमा कॉल एजी इचा को बह अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन मच में लाहेगा दिल से दिल तक
3: आप सुन रहे थे इदुमिस्मी श्रोताओं का समाचार। इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनने के लिए आप टाइप कर सकते हैं मेरी वेव 444.4 मीटर था 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर आप ट्यून करके आप सुन सकते हैं इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए फिल्मी गानों का सिलसिला जारी रखते हैं और सुनते हैं क्योंकि फिल्म का ये गाना अलका याग्निक एवं उदित नारायण की आवाज में।

अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।

बाबुल सुप्रियो एवं अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म हम तुम का ये गाना। आप बने हुए थे हमारे साथ प्रोग्राम हिंदी फिल्मी गानों के साथ। ये आकाशवाणी चैनल के अरुण एफ एम 103.1 MHz से। श्रोता, हमारी दूसरी प्रसारण सभा में प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी गैर अत्य, तकनीकी अभियंता नंद कुमार और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे अपर्णा।

0: के साथ। तो मुझे आपकी रेडियो साथी कविता को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज में। आगे के सफर के लिए आपको छोड़े जा रही हूँ आपकी चहेती RJ अपर्णा के साथ।
1: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी।
2: इरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा डुबाट सरोम सोम सेप्टेम्बर जिलिंग रंगसा करोक तारीख आरो रंगजा बलई बजी खु मिनिट थोरियाम मसो तंगसा प्रोग्राम तफांगराय रुंगनांग रो कोहांग वासिम केंगलांग रो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो निनाम न्यू दिल्ली नंग योसो भूमि नंग लगबंगा एडिशन सिमिकन इंडिया 2026 पर केप तफांग चिंग ओ रोक द परसारोम कॉन्फ्रेंस पर फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म जांग ची प्रयु कोलाबोरेशन काउ अमाय तक यांग मो इनोवेशन मो मैनुफैक्चरिंग काउ सहेंग मो इन्वेस्टमेंट तक यांग मो अराउ फ्यूचर रेडी टैलेंट डेवलप तक यांग मो पर कॉन्फ्रेंस नंग ग्लोबल सेमीकंडक्टर नई इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम पर अदाम लामन चिंग रोक अराउ सेमीकॉन इंडिया पर इंडिया वंग प्रीमियर सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस नई एग्जीबिशन जांग र अरा ऊपर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर सेमी र तगियांग रंग रूप द साउथ अफ्रीका नंग केप टाउन नंग लग क्रोक्सा तक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस CPC तथुंग नंग मनई अफंगसा नंग अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वंग डिप्टी स्पीकर कार्डो निगियो नई अजामवन पार्लियामेंटियन हेंग पर कॉन्फ्रेंस नंग तोंथोक तंगो रूप द अरो पर कॉन्फ्रेंस नंग बगायोंग रा करो कॉमनवेल्थ मुंग ताम वंग रिप्रेजेंटेटिव्स हेंग तोंथोक र परजु कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन मन तगयांग छिंग रूप द अरो पर कॉन्फ्रेंस नंग बली बाय पार्लियामेंट्री नई डेमोक्रेटिक इशू ताम मन रफानची अरो कॉन्फ्रेंस पर मचो सेप्टेम्बर जिलिंग रंगसा तक तारीख सा नंग थुम चिंग रोक स्टेट नंग ड्रग्स फक्सा रोप तंगम कैंपेन तगयांग रंग स्टेट बंग गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक र नशा मुक्त भारत अभियान अंदर मनई ईटानगर नंग लोक भवन नंग डिक्लेमेशन एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन पर तगयांग तंग रोक प्रजु ड्रग्स र मई म अबा इफेक्ट कजांग रोप युथेंग म ततक तक म परम ड्रग्स फ्री सोसाइटी तगयांग मकाउ नंग एक्टिव पार्टनर्स कयांग म युथेंग म ततक म पर इनिशिएटिव प लाम थंग रो द अर उपर प्रोग्राम नंग गवर्नर र पार्टिसिपेंट्स हेंग म रहम द रहम रो पनर सोसाइटी म अहुरांग म रबु र मोराउ श्रीलंका तंग रो द अरुणाचल प्रदेश नई मुंग प अमाय तगयांग मकाउ नंग इंजीनियर्स हेंग र अरेंग काम सोम नंग रो अरुणाचल प्रदेश वंग एजुकेशन नई रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर PD सोनार फंत ईटानगर नंग मनई बैंक्वेट हॉल नंग लाख बगायों रतकाउ इंजीनियर डे सरेंग तनंग तोंथोक तनंग प्रमाण पर फान रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नई नेशन बिल्डिंग मकाउ नंग अरेंग करुम रंग रो एजुकेशन नई रूरल वर्क मिनिस्टर PD सोनार वसडोप इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी पर श्रीलंका अरो भारत रत्न सार मुक्सा गुंदम बिजेस राया बर्थ एनिवर्सरी सकान नंग अरुणाचल प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन र लग बंगयों रत कौ इंजीनियर्स डे प तगियांग तंगो रूक पासीघाट नंग जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जेएनसी नंग मनाई रहा।

दोस्तों आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी, जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि रास्ता कितना भी मुश्किल हो, बस चलते रहिए, क्योंकि मंजिल अक्सर उसी के कदम चूमती है जो आखिरी पल तक कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, और आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, संचालन निष्पादक टी तांजांग, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और HPT में मौजूद

0: और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हां, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितम्बर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
4: अरे, पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
5: नर्स दीदी, क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
4: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
5: सच में दीदी?
4: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
6: गुड इवनिंग ईटानगर।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर के इस सेगमेंट में। गुड इवनिंग ईटानगर का जो प्रोग्राम होता है वो एक कंपोजिट प्रोग्राम है जिस पर ना हम आप सभी की केवल मनोरंजन करवाते हैं बल्कि कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियां भी आप सभी से साझा करते हैं। दोस्तों आज एक खास दिवस है, जी हाँ, 16 सितंबर यानी कि है आज वर्ल्ड ओजन डे यानी कि विश्व ओजन दिवस। ओजन यानी कि वो लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट तथा जो सूर्य से आने वाली खतरनाक रोशनी है इससे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 16 सितंबर 1987 को ओजन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ को कम करने के लिए इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनओ ने

1994 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय औजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तभी से 16 सितंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड ओजन डे मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी को सुरक्षा कवच यानी कि ओजन का जो परत है इसका संरक्षण नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना। ये गैस सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। ये परत त्वचा कैंसर मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियों से इंसानों की रक्षा करती है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि हम अधिक पॉल्यूशन ना करें यानी कि एयर पॉल्यूशन जितना बढ़ेगा ओजन लेयर उतनी ही डैमेज होगी और अगर ओजन लेयर डैमेज हुई तो सन रेज जो सन के जो खतरनाक किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज है एक्स रेज है वो हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी और इससे हमें कैंसर यानी कि स्किन कैंसर और कैटरेक्ट जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसका हर इयर्स जो है अपना एक थीम होता है। इस साल यानी कि वर्ष 2026 की थीम है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई यानी कि ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट है। तो आप सब भी ओजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम एयर पॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए यानी कि कम से कम वाहन चालक फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुएं को बचाए और हार्मफुल गैसेस जो स्मोक्स छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में उसे कम करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों हमने ये छोटी सी जानकारी आप सभी से साझा की। वक्त हो चला है आप सभी को प्यारा सा गीत सुनाने की। एंजॉय कीजिए।

फिर भी बिछड़ा यार। दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की गुड इवनिंग ईटानगर का ये जो सेगमेंट है अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं इस सेगमेंट में पेश किए गए इन्फॉर्मेशन और

0: नजराने पसंद आए होंगे आप सभी को। बहरहाल आपसे बस कुछ ही देर में हम बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष काजुन ग्योन ने अन्य सांसदों के साथ दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने ईटानगर स्थित लोकभवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत चलाए जा रहे निरंतर बाल सुरक्षा जागरूकता अभियानों में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में 15 दिवसीय हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही जानवारी ताली एक ही पर्वतारोहण सत्र में माउंट कून और माउंट नून दोनों ही चोटियों में सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात दिल्ली में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा कर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रीय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। वित्त मंत्री ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध करने को और बढ़ावा देने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधित समझौते को सीधा उल्लंघन करती है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। यह सहयोग को बढ़ावा देने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
1: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कालो निग्योर ने अन्य सांसदों के साथ दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सम्मेलन में 56 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सह निर्वाचन का भी आयोजन किया जा रहा है।

0: इस सम्मेलन में विभिन्न संसदीय और लोकतांत्रिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का समापन 19 सितंबर 2026 को निर्धारित है। राज्य में बढ़ते नशीले पदार्थों के सेवन के खतरे के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने ईटानगर स्थित लोक भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने के लिए प्रेरित करना है। राज्यपाल ने प्रतिभागियों से बातचीत कर उनके आत्मविश्वास, विचारों की स्पष्टता तथा समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिला पुलिस द्वारा प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत चलाए जा रहे निरंतर बाल सुरक्षा जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला दर्शाता है कि स्कूलों में बच्चों को दी गई जागरूकता उन्हें दुर्व्यवहार की स्थिति में मदद मांगने के लिए सशक्त बना सकती है। मौजूदा मामले में आरोप है कि एक पड़ोसी ने मिठाई देने के बहाने पीड़ित बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ कथित अपराध किया। पीड़ित बच्ची के चचेरे भाई, जो स्वयं भी स्कूल में ही पढ़ता है, उसने बाद में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 यानी 1098 के माध्यम से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चाइल्ड लाइन से संदेश प्राप्त होने पर महिला पुलिस की टीम लेड इंस्पेक्टर आमुम पान्यांग के नेतृत्व में तत्काल कार्रवाई में जुटकर एक घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस बीच ईस्ट सियांग पुलिस ने अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय से सतर्क रहने, बच्चों की बात बिना टोके सुनने तथा जब भी कोई बच्चा परेशानी में दिखाई दे तो तुरंत उचित सहायता लेने की अपील की। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में 15 दिवसीय हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह में हिंदी को संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकीकरण की भाषा के रूप में और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी विभाग जेएनसी पासीघाट द्वारा भारतीय भाषा मंच ईस्ट सियांग इकाई के सहयोग से आयोजित की जा रही है। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा को एवं साहित्य के प्रति अधिक रुचि विकसित करने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान कविता पाठ, निबंध लेखन और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न साहित्यिक और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही जानवारी ताली एक ही पर्वतारोहण सत्र में 7077 मीटर ऊंची माउंट कुन और 7135 मीटर ऊंची माउंट नून दोनों ही चोटियों को सफलतापूर्वक फतह करने वाले पहली भारतीय महिला बन गई है। जानवारी ताली ने गत 8 सितंबर को लद्दाख में माउंट नून पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और इससे पहले उन्होंने 27 जुलाई को माउंट कून पर चढ़ाई पूरी की थी। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, शियोमी, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, ईस्ट सियांग और अंजाव के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा है कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has stressed that tax-related proposals to the government must keep the nation first over and above seeking rate reduction, exemption or concessions. She was speaking at the inaugural two-day conference on New Age Taxation organized by the International Tax Research and Analysis Foundation in Bengaluru today. The minister called upon the academics, researchers and think tanks to make independent tax policy research a regular part of public discourse that can be examined, challenged and improved. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. Under the agreement, tariffs on about 95% of New Zealand's exports to India will be eliminated or significantly reduced. All Indian goods will receive duty-free access to New Zealand's market. Wellington has also agreed to invest $20 billion in India over the next 15 years. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of SEMICON India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi tomorrow. The three-day conference will serve as a flagship platform, bringing together the global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment and develop future-ready talent. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies, and delegations from more than 50 countries. The exhibition will feature six country pavilions representing Japan, South Korea, Malaysia, Netherlands, Singapore, and Sweden, 12 state government pavilions, and a dedicated startup pavilion. SEMICON India is India's premier semiconductor conference and exhibition, jointly organized by the India Semiconductor Mission, the Ministry of Electronics and Information Technology, and SEMI. External Affairs Minister today summoned the charge the affairs of the High Commission of Pakistan in New Delhi and lodged a strong protest over the unacceptable conduct of Pakistani naval units at sea, which led to a collision with a unit of the Indian Navy. In a statement, the ministry said, "While the incident which took place in international waters did not cause any major damage, the conduct was in direct contravention of the agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercise, maneuvers and troops movements of April 1991. The ministry asked the charge the affairs of Pakistan to convey to the concerned Pakistani authorities the need for all military units to observe due care and respect the provisions of the relevant agreements between the two sides in order to prevent any such incidents in future. A central team led by Union Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan is visiting flood-affected areas of Bihar today to assess the situation. Chief Minister Samrat Chaudhary and senior state government officials are accompanying the team. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from tomorrow till the 17th of next month across the country. The key focus areas of the campaign include transforming cleanliness target units and high footfall public places, promoting youth participation in cleanliness and promoting Swachhata Se Samriddhi through circular economy and waste to wealth initiatives. The theme of this year's campaign is Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar will be on a two-day official visit to Bhutan from today. He will hold bilateral talks with Foreign Minister of Bhutan, Leonpo D. N. Dungyal. The External Affairs Minister will receive a royal audience with the King of Bhutan and a call on the Prime Minister of Bhutan. The Ministry of External Affairs said the visit continues the tradition of regular high-level exchanges and to further strengthen the close ties of friendship and cooperation between India and Bhutan. The 22nd edition of the India-US Joint Military

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे नोक्ते समाचार। हम आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ट्यून करनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे साथ इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर पे चलना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM पर। अरुण FM, जी हाँ, आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बस एक छोटा सा इंतजार और हम लौटते हैं लेकर आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव।
1: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और

ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

0: हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे आज के इस इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी वैल्यू दूसरों की नजर में कैसे बढ़ाएं, ताकि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हल्के में ना लें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे। जी हाँ, लोग इग्नोर ना करें, हमें इज्जत करें। दूसरों की नजर में खुद की वैल्यू बढ़ाने से पहले आप खुद की नजर में अपने आप की वैल्यू को बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ बातें हो जाए। वैसे दूसरों के सामने में अपने बारे में हमें निगेटिव बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मसलन कि मुझे ये नहीं आता, मसलन कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। भले ही आपको नहीं आता हो और आप भले ही 2 मिनट्स मैगी बना के आप खुद खा लेते हो, लेकिन इसे बताने की क्या जरूरी है कि आपको खाना बनाना नहीं आता, मुझे घर की साफ सफाई बिल्कुल करनी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। इससे आप सिंपैथी गेन करेंगे, खुद को कमजोर बनाना बंद करें दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आपकी कमजोरी कहीं ना कहीं दूसरों के लिए फायदा के ही काम करेगी और पीठ पीछे वो लोग आपकी बुराई ही करेंगे। सेल्फ बोस्टिंग भी जो है ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप सर्व गुण से संपन्न हो सकते हैं, अगर आपके पास गुण है तो वो अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे। फूल खुशबू देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं खुशबू देती हूँ, है ना। उसके अच्छे कर्म ऐसे ही बता देते हैं। तो सेल्फ बोस्टिंग जो है अपने आप को घमंड और एरोगेंट दिखाने की कोशिश करना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बातें तो और भी करेंगे ही दोस्तों, लेकिन इससे पहले हो जाए एक प्यार भरा सॉन्ग बस आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए।
1: ये कितने का है?
2: 5 रुपए
1: हमारे पास।

दोस्तों, आज हम इवनिंग ड्राइव में बात कर रहे हैं कि अपनी वैल्यू हम दूसरों की नजर में कैसे बढ़ाएं, है ना। तो अपना बाउंड्री लिमिट सेट कर दीजिए ताकि कोई भी कुछ भी चाहे, जो मन आए वो कह के यूं ही ना चले जाए आपको। दोस्तों, कभी कभार जो है ओवर एक्सट्रोवर्ट होने से भी बचना चाहिए। हमेशा सामने वाले खराब मान जाएंगे या हमसे दूर हो जाएंगे, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि जो आपको चाहते हैं ना, वो आपकी कदर और आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, और जो आपको नहीं करते हैं वो आपको हमेशा ताना मारेंगे और जो है आपको कष्ट पहुंचाएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, बात बात पे आपकी कमजोरियां फिर आपके नुस्ख निकालेंगे, है ना। तो आपको खुद की अपनी लिमिट जो है तय करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ वेरी बिग थिंग। वो कहते हैं ना कि अभिमान नहीं स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए, है ना दोस्तों। और खुद की स्टैंड खुद लीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए कि कौन आपको वैल्यू देता है, रिस्पेक्ट देता है, या कौन कौन लोग फेक है। ज्यादातर दोस्तों चेहरे पर जो है चेहरा लगा लेते हैं, यानी कि एक और नकाब पहने रहते हैं, और ये लोग फेक होते हैं जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते।

0: आपको हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, आपके बारे में निगेटिविटी फैलाते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा दूर ही रहे। कोशिश कीजिए कि दूर ही रहो बाबा, तुम हमेशा उनके बारे में सोचना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए। चलिए और भी बातें मैं आप सभी को बताती हूँ, लेकिन हो जाए एक और प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।
1: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: माँ, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों वक्त तो रह गया है कम, तो मैं फटाफट और दो टिप्स आप सभी को बता दूं कि क्या आपको करना चाहिए। आपको भी दूसरों को वैल्यू देनी चाहिए, जो आपको प्यार करते हैं, लव एंड केयर करते हैं, उनकी कदर करें, खुद अपनी बेटर वर्जन बनकर रहे। कुछ जी हाँ नया ही हो, छोटी मोटी ही क्यों ना हो, मगर कुछ ना कुछ आप काम जरूर करता रहे। जी हाँ, कुछ छोटा मोटा काम करते रहने से जो है सबसे पहले आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे और खुद कमाएंगे, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी दोस्तों। और हमेशा हाँ जो है लेने के लिए नहीं उठना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए भी उठनी चाहिए। और जब आप देते हैं ना, आपकी वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाती है दोस्तों। अपने लुक्स पर बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, इनर लुक आउटर लुक। इनर लुक कोई नहीं देखता, आउटर लुक लोग देखते हैं। जी हाँ, एंड ओवरऑल अपने आप पर ध्यान दें, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। और कभी कभार जी हाँ दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेके अपनी ग्रूमिंग भी करवा लीजिएगा। जी हाँ, वो कोई खराब बात नहीं है कि आप पार्लर जाके थोड़ा सा फ्रेश अप होके आ जाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है अपने पैसों से।

0: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी क्या? सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, शाम की महफिल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम आप सभी को बता दें कि आज के इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में आपके साथ मौजूद है, जी हाँ, संचार निष्पादक टी तांजांग, तकनीकी अभियंता ताना आतम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए आप सभी के अपनी आज अपर्णा मौजूद है आप सभी के खिदमत में। करने आए हैं हम आज एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम। जी हाँ दोस्तों, वैसे हो सकता है कि इस वक्त आप ऑफिस से काम से निजात पाकर घर की ओर लौट रहे हो। आप में से बहुत लोग जो है गणेश चतुर्थी के मूड में गणेश चतुर्थी मना रहे हो, या फिर फेस्टिव ओकेशन में झूम रहे हो, या फिर कहीं खास किसी के साथ बैठकर एक कप चाय हो या कॉफी के इश्क भरी चुस्कियां ले रहे हो। और ऐसे में अरुण एफएम आ जाता है और प्रॉमिस के साथ, वादे के साथ आ जाता है लेकर आपके शाम को बेहद खास, बेहद रोमांटिक।

रोमांटिक परफेक्ट एम्बियंस देने के लिए बॉलीवुड ट्रैक के साथ तो क्या बात हो जाए, है ना दोस्तों। वो कहते हैं ना कि दिल की अपनी ही एक दुनिया होती है, जी हाँ, जहां तर्क नहीं सिर्फ एहसास बोलते हैं, जहां किसी की एक मुस्कान जो है पूरी जिंदगी दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, खुशी से बदल देता है ना। और जब दिल किसी के प्यार में धड़कने लगे तो उसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं होता। तो आइए आज के इस खूबसूरत शाम में हम भी डूब जाते हैं प्यार एहसास और मोहब्बत के धड़कनों को धड़काते हुए, जिस किसी की यादों को फिर से ताजा करने में लग जाते हैं, और सुना देते हैं आप सभी को प्यार भरा गीत। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी गीत को दोस्तों। जी हाँ,

0: दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ, शाम के महफिल के साथ, और इसे आप सभी के लिए पेश खदमत कर रहे हैं हम FM बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM। जी हाँ दोस्तों, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद ढेर सारी बहुत प्यारे प्यारे नगमों के साथ। एंजॉय कीजिएगा।
1: ओल्ड निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइज

0: ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। कभी ये चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी आंखों में खामोश आंसू छुट जाती है, फिर भी दिल है कि बार बार प्यार कर बैठता है दोस्तों। जी हाँ, शायद इसलिए कि मोहब्बत में दर्द भी अपना सा लगता है और किसी का साथ पूरी दुनिया से भी ज्यादा खास लगने लगता है। तो आइए यादों की उसी खूबसूरत राह पर चलते हैं जहाँ प्यार है, एहसास है और कुछ अनकही सी बातें भी है। तो पेश है एक सदाबहार नगमा, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर तो अभी तक मिला नहीं कहीं। शायद ये गीत आप सभी को आंसर दे दे।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल का ये सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपके शाम को खास बनाने यानी कि परफेक्ट एम्बियंस देने में हम कामयाब हुए हैं। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे।

0: Arun FM Go.
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Bandhu. नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा गुड्डू।
5: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
7: नर्स दीदी, क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। सच में बहुत परेशान हूँ।
6: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
7: सच में दीदी?
6: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहे, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, इस प्यार भरे तकरार भरे गीत के साथ ही हमारे आज के जो है हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद आप सुन सकेंगे आदि समाचार। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन अन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट अन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी अन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। अन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए अन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

0: নিংমিল আয়ন হিলা দু দেলকে আনে দে এসাই বি গদু ইমিল কলকম আয়ন হিলা দু
1: ইদকম মঙ্গাব গালাঙ্কা ধুব দাকব হিকলক আলা ঘর হিকলক গমরক হিকলক দবতব হিকলক দেল তারহঙ্গু বুংকলক এইচ আই ভি কিনাম হ ব্যাগং মা দু
0: এস আই ভি কিনাম এম ইতুম হিদপ পতারল মনা প কা দে হিলাঙ্কা দেম ইমিল দাম প ইয়ে লাঙলু কাম্প ইনাম ইলা দু এস আই ভি কিনাম এম পেসপ আইমাম কিনাম হোক লগাং এম কেনপু প আইডু দল কিনাম হম আরো রূপ কাঙক প আইডু দল এস আই ভি কিনা আমি এম লুকে লুড়েন কাপ আইমাং এস আই ভি কিনাম হোক লগাং এম আইপ কেনপ মনা কদিং ন্যাশনাল এইডস হেল্পলাইন 1097 ল ইরক হিলা লগাং এম তান্নম হিলাঙ্কা অরুণাচল প্রদেশ স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস নাহরলগুনে বানা লগাং এম মঙ্গে বদলা আগম হম বিকান্ডেন বতু
2: दोस्तों आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप अपना सफर हमारे साथ यूं ही चंद लम्हों का सफर सुहावना करते हुए चलना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों वक्त हो चला है आज के कलाकार के इस खूबसूरत सेगमेंट का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
9: गीत संगीत
10: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से,
9: प्यार भरे अल्फाजों में
10: दिल से दिल की बात,
9: बस आपके नाम।
10: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वाकई में दोस्तों, आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर। बहरहाल अब आप आनंद उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार के सेगमेंट के साथ और आज के कलाकार के इस सेगमेंट में हम पेश खिदमत करने वाले हैं जाने माने सिंगर सोनू निगम को और उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स को। सोनू निगम का जन्म July 30, 1973 फरीदाबाद में हुआ और शुरुआत से ही उन्होंने, कहा जाता है कि 4 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। वो अपने पिता के साथ मोहम्मद रफी के गाने यानी कि क्या हुआ तेरा वादा इस सॉन्ग के साथ वो स्टेज पर शो किया करते थे। 19 साल की उम्र में वे अपने पिता के साथ मुंबई आए। उन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उन्हें अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का संदेश आते हैं ये दिल दीवाना जैसे गानों की बड़ी पहचान मिली। उन्हें साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से

सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बहुत बातें हो गई सोनू निगम के बारे में, अब आपको सुनवा देते हैं बहुत प्यारे प्यारे गीत सोनू निगम के सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स को।

सोनू निगम जैसे कलाकार हमारे लिए ऐसे ही हमेशा हमेशा जो है अच्छे अच्छे नगमे गाते रहे और हम आप सभी को उनके नगमों को सुनाते रहे। बहरहाल दोस्तों, ले लेते हैं आज के कलाकार से हम एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आपसे बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे निशी समाचार। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: hoga soso BGP nanam bikosul ni achboga bikam hoso achi dodan hoga so achi nule achi usi madan nuluk ala chiri kolo chetin minsul doklo lekin go davan davam la doi kam nule chi achi umadana o gab nule achi dodne domadana ham mod modam ka da nul medical hala nul engam ka katam do lipana o pen kolo ulu ninga HIV la AIDS wa gutu gura lo yin dod lo kam ho ni tu lo ham kam nula anya bya dod lo yin sam nula timpa do lima de ne sam ya nula se ka do lip ne e ma di si se ka ma ba anya ma timpa ba nyu kam so ni si HIV ya do ka de ne o ge sam nula chen do tkal bahara nula chin do lo kam nula 1097 host number so call ma do sam anya ba taka tka o ge sam chem do sam aya ba jig ma do sam nula HIV ma do wal kal do bu nge Arunachal Pradesh State AIDS Control Society oga DHS Naharlagun loga jilin panan ke se takap se puya he te ko payalin cho
1: Dosto aap sun rahe the Nishi Samachar to agar aap hamare Nishi shrotaon ke karyakram ka anand uthana chahte hain to aapko tune karni padegi dosto मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर जी हाँ दोस्तों एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक तो दोस्तों अब आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सफरनामा और इसमें आप सुन सकते हैं टूरिज्म एंड प्रमोशन कल्चर गोल्डन पैगोडा के बारे में जो आपको पेश खिदमत करेंगे कुंग खामू खाम
2: क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पहुंचते ही बिना किसी वजह के आपका मन अपने आप शांत हो जाए जहां हवा भी कुछ अलग सी महसूस हो घंटियों की आवाज सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक उतर जाए और डूबते सूरज की गोल्डन रेज किसी मंदिर की छत पर इस तरह बिखर जाए जैसे आसमान ने अपनी सारी रोशनी वहीं उतार दी हो नमस्कार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा मैं हूं इस सफर में आपका ट्रैवल बडी आज हम निकल पड़े हैं अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले की ऐसी डेस्टिनेशन पर जहां नेचर की सिंप्लिसिटी फेथ की डेप्थ और कल्चर की ब्यूटी तीनों एक साथ देखने को मिलती है तो आज हमारी डेस्टिनेशन है गोल्डन पगोडा जिसे ताई खामती लैंग्वेज में कोंगमुखाम कहा जाता है ताई खामती भाषा में कोंगमु का मतलब है पगोडा यानी बुद्धिस्ट टेंपल और खाम का मतलब है गोल्ड कोंगमुखाम मतलब गोल्डन पगोडा कोंगमुखाम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है तो चलिए आज का सफरनामा शुरू करते हैं

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। जब भी आप अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद स्नो कवर्ड माउंटेन्स, घने जंगल और घुमावदार सड़कें। लेकिन नामसाई इससे थोड़ा अलग है। यहाँ दूर दूर तक फैले पैडी फील्ड्स, हरे भरे टी गार्डन्स, ओपन ब्लू स्काई और शानदार रोड्स इस पूरे सफर को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है और अचानक दूर होराइजन पर धूप में चमकती हुई एक गोल्डन इमारत दिखाई देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने हरे कैनवस पर सोने का रंग भर दिया हो। यही है कोंगमू खाम यानी गोल्डन पगोडा। जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटने लगता है। मेन गेट से अंदर कदम रखते ही आपका स्वागत कोई इंसान नहीं बल्कि गहरी शांति करती है। हवा में खुली घंटियों की मधुर आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती प्रेयर्स।
1: नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
0: मिलकर ऐसा माहौल बनाती हैं जहां मन अपने आप रिलैक्स होने लगता है। तभी महसूस होता है कि कुछ जर्नीज सिर्फ फोटोज लेने के लिए नहीं होती बल्कि अपने आप से मिलने के लिए भी होता है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। अब सुनते हैं यहाँ आए विजिटर से और जानते हैं कि वो इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में, या तो कहें कोंगू खाम के बारे में क्या कहते हैं।
1: आपका नाम?
2: राम किशोर सिंह।
1: तो पहले जो मंदिर नहीं था, अब मंदिर आ गया, उसमें फर्क क्या देखते हैं?
2: फर्क बहुत अच्छा हो रहा है
1: जी।
2: बहुत लोग आते हैं जहाँ तहाँ से घूमने के लिए, पर्यटक लोग आते हैं वो भी देखते हैं, हर हमेशा भीड़ भड़क्का रहता है, अच्छा लगता है
1: जी। तो जैसे आपने कहा कि पर्यटक आते हैं, तो ये मंदिर बनने के बाद पर्यटन की संभावना कितनी बढ़ी है?
2: बहुत बढ़ी है, हर हमेशा जैसे आते रहते हैं, यहाँ से लेकर के चौखाम हुआ, आपका दीवान हुआ, ये सब जगह में आते रहते हैं।
1: कोई अगर नामसाई डिस्ट्रिक्ट आए तो गोल्डन पगोडा के अलावा आपके हिसाब से, आपके राय में और लोगों को कहाँ कहाँ जाना चाहिए?
2: एक आपका नमसाई हो गया, एक आपका टेंगा पानी हो गया, आपका आलूबारी जो ब्रह्मपुत्र ब्रिज है वो हो गया, नेक्स्ट में अगर घूमने चाहते हैं तो आपका दीवान एक हो गया, दीवान जो आपका वाकरू जो आपका पसराम कुंड है
1: जी, जी,
2: उसे इधर से जाना पड़ता है, वो भी एक घूमने का बहुत अच्छा जगह है
1: जी, जी, जी।
3: हम आपका ये आसाम से आए।
1: आसाम से? और इससे पहले भी आप विजिट किया था
3: जी? तो हो गया, दो तीन बार हो, ये लास्ट तीन बार हो रहा है। खास चीजें नहीं, और घूमने के लिए आपको अच्छा जगह मिल जाता है ना, बहुत दिन के

0: बार आता है अभी लगभग 2 साल के बाद ही आ रहे हैं। फीलिंग आप तो क्या बोलेगा, और वो मौसम देख के होता है भैया
1: ऐसे ना,
0: कभी कभार गर्म में गर्म का मजा, ठंडा में ठंडा का मजा। जी वो एक दोस्त है
1: जी,
0: दोस्त वो आगे में है
1: जी।
0: और उसके दीदी के साथ आया, वो बोला था उसके बाद लगातार आ रहा है अभी।
2: जी हाँ, यही तो किसी भी ट्रिप की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जब हम किसी जगह को सिर्फ देखते नहीं बल्कि फील भी करते हैं। गोंग मुखाम सिर्फ एक खूबसूरत बुद्धिस्ट टेंपल नहीं है, ये ताइखामती कम्युनिटी की कल्चरल आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा भी है। ताइखामती कम्युनिटी थेरावाडा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस और लाइफस्टाइल साउथ ईस्ट एशिया, खास तौर पर म्यांमार और थाईलैंड की बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से काफी जुड़ी हुई है। साल 2010 में बना ये पगोडा आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में गिना जाता है, या तो कहें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं देश विदेश में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसकी आर्किटेक्चर वाकई देखने लायक है, गोल्डन शिखर, मल्टीलेयर्ड रूफ्स, ब्यूटीफुल कार्विंग्स और शांत मुद्रा में विराजमान लॉर्ड बुद्ध की विशाल स्टैचू हर विजिटर्स को कुछ देर रुकने पर मजबूर कर देती है। पूरा कैंपस बेहद साफ सुथरा है, चारों ओर ग्रीन गार्डन्स, छोटे छोटे स्तूपास, मेडिटेशन कॉर्नर्स या सेंटर्स और कलरफुल फ्लावर्स इस जगह की ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ सुबह पहुँचे तो सूरज की पहली किरणें पूरे पगोडा को गोल्डन ग्लो से भर देती है और शाम को डूबता हुआ सूरज इसे बिल्कुल अलग रंग से रंग देता है। यही वजह है कि दिन का हर समय और हर सीजन इस जगह को एक नया लुक देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। अगर आपकी ट्रिप अप्रैल महीने में हो तो आपको ताइक हमते कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल सांकेन देखने का मौका जरूर मिलेगा। सांकेन ताइक हमते कम्युनिटी का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। इस दौरान वे लॉर्ड बुद्ध की स्टैचू पर पवित्र जल अर्पित करते हैं और एक दूसरे पर पानी डालते हैं। हम कह सकते हैं कि खामती होली सांकेन, बट होली की तरह वे रंग यूज नहीं करते बल्कि पानी एक दूसरे पर डालते हैं, एक दूसरे को न्यू ईयर विशेस देते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, ढोल, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स और फोक डांस पूरे माहौल को फेस्टिवल वाइब से भर देते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर एक अलग से खुशी दिखाई देती है। ये सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बल्कि अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को नई जेनरेशन तक पहुंचाने का एक खूबसूरत जरिया भी है। अगर आप इस समय यहाँ आए तो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक पूरी लिविंग कल्चर को बहुत ही करीब से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। अब सुनते हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के एक लोकल रेसिडेंट की बात। तो आइए सुनते हैं वे कोंगमुखाम के बारे में क्या बताते हैं और हमें क्या जानकारी देते हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर चावानंद चिरिंग है और मैं नामसाई का रहने वाला हूँ। कोंगमुखाम का अगर हम लोग हमारे कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है हमारे कम्युनिटी में, क्योंकि एक तो ये हम लोगों का कल्चर का एक सेंटर के तौर पे अगर बोला जाए तो भी गलत नहीं है, और आज के दिन पे जो हम लोगों का यूथ है अपना जो लोकल स्क्रिप्ट या डायलेक्ट वो सब लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो कोंगमुखाम में वो सब चीजों को भी हम लोगों का सिखाया जाता है। तो काफी कल्चरल प्रिजर्वेशन के तौर पर अगर देखा जाए अभी के टेस्ट में तो ये सब चीजों में भी काफी एक बहुत मतलब अच्छा रोल प्ले करता है। हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखे तो ये एक टूरिस्ट लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट है हम लोगों का कोंगमुखाम। उसके अलावा अगर मैं यहाँ के लोकल रेसिडेंट होने के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे पहले इस तरीके का कुछ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं हुआ करता था, क्योंकि टूरिस्ट इनफ्लो इतना नहीं था यहाँ पे। तो अभी के टाइम पे काफी बाहर से भी टूरिस्ट लोग आते हैं, घूम जगह को देखते हैं। एक तो ये हो रहा है कि यहाँ का हम लोगों का जो कल्चर है के बारे में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ का जो भी रीति रिवाज है, यहाँ में लोग हम लोगों का कम्युनिटी लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। दूसरा, जो भी लोकल रेसिडेंट्स है हम लोगों को भी यहाँ पे भी थोड़ा सा इनकम का एक सोर्स मिल जाता है जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं उससे, कि जिस तरीके से छोटे छोटे हट्स लगा के या रिजोर्ट वगैरह किसी भी तरीके का जो भी चीजों को या लोकल जो भी सामान ऑर्गेनिक सामान है वो सबको भी सेल करके भी उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एक इनकम जनरेशन का सोर्स भी मिल जाता है। सांकेन का अगर देखें तो हम लोगों का एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो आजकल क्या हो रहा है कि सांकेन को इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को पता है कि सांकेन किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। तो उन लोगों का भी रहता है कि एक एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो जब उन लोग सांकेन पे आते हैं, खुद उन लोग सांकेन को फील करते हैं, सांकेन में उन लोग इन्वॉल्व होते हैं सांकेन फेस्टिवल पे, तो उनका ये रहता है कि उन लोग यहाँ के कल्चर को समझ रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ में वो लोग घुल मिल रहे हैं फेस्टिवल के टाइम पे। तो वो एक एक्सपीरियंस ही उन लोगों का काफी अलग सा रहेगा जो उनके लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए रहेगा, कि वो लोग के साथ में एक मेमोरी पे रहेगा कि हाँ हम लोगों ने यहाँ के लोकल फेस्टिवल को अटेंड किया है, हम लोगों ने लोकल के साथ में टाइम स्पेंड किया है, कि वहाँ के कल्चर को हमने समझा है, रिचुअल्स को हमने समझा है। वही अगर नॉर्मल डेज में जब टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं ऑब्वियसली उनके पास भी मेमोरीज रहेगा, लेकिन उन लोग बस आके जगह को देख के जगह को फील करके जा रहे हैं, उन लोग वो कल्चर का वो फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाता है उस दौरान पे। तो वही है कि अगर लोगों को कल्चर को अच्छे से समझना है या उसको इस तरीके से थोड़ा सा फील करना है तो अगर वो लोग फेस्टिवल टाइम पे आते हैं अप्रैल के टाइम पे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। आइए जगह को देखिए, कल्चर को समझिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग आएंगे, हमें जगह को देखेंगे, कल्चर को हम लोगों का भी प्रमोट होगा। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा साफ सफाई का भी ध्यान रखे तो वो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि काफी टूरिस्ट लोग ऐसे, मैं नहीं बोलूंगा कि सब लोग, लेकिन कुछ टूरिस्ट लोग ऐसे हैं कि आते हैं जगह देखते हैं लेकिन वहीं पे गंदगी फैला देते हैं।

0: थोड़ा सा उसको मेंटेन रखिएगा। और जिन गोल्डन पगोडा है वो बस एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो हम लोगों का मंदिर है, तो एक स्पिरिचुअल प्लेस है। तो वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा या एक जो जगह का माहौल है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना भी थोड़ा सा जरूरी है टूरिस्ट लोगों के हिसाब से। तो अगर वो लोग ये सब चीजों का ध्यान दे तो और अच्छा रहेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर सिंह, आपने कोंगमुखाम के बारे में इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे साथ शेयर की। शायद यही किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां इंसान अपना नाम, भाषा और पहचान से पहले सिर्फ एक इंसान बनकर पहुंचता है।

हर सफर अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर छोड़ जाता है। कुछ जगह हमें नेचर से जोड़ती हैं, कुछ हिस्ट्री से और कुछ हमें खुद से मिलवा देती हैं। कोंगमुखाम एक ऐसी ही जगह है जहां आकर एहसास होता है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। बस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी कभी उसे महसूस करने के लिए ऐसी किसी शांत जगह तक आना पड़ता है। अगर कभी भी आपकी यात्रा अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले तक आए तो गोल्डन पगोडा घूमना मत भूलिएगा। यकीन मानिए, आप यहां से सिर्फ खूबसूरत फोटोज लेकर नहीं बल्कि दिल में सुकून और ढेर सारी यादें लेकर लौटेंगे। तो आज का सफर यहीं तक। आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रेवल शो सफरनामा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश के एक और खूबसूरत अनदेखी और दिल को छू लेने वाली किसी डेस्टिनेशन के साथ। तब तक नई जगह को जानिए, नई कहानियां सुनिए, लोगों से मिलिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्म ट्रैक्स के साथ। बट ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं लेकर और भी ढेर सारी छुमाते हुए गीतों को। तो आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हां, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितम्बर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547। HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
3: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
4: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
3: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
4: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
6: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
5: ना,
6: पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
6: नहीं,
5: पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में।

0: सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
1: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए आप सभी को सुना देते हैं धुआंधार गीत बैक टू बैक।

0: दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे थे बैक टू बैक हिंदी बॉलीवुड ट्रैक के साथ और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है दोस्तों एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, तो अब वक्त हो चला है दोस्तों अपना गीत कार्यक्रम का। एक ब्रेक के बाद आप सब सुन सकते हैं।
1: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
2: नमस्कार, अपने अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम अपना गीत में हार्दिक स्वागत है। और हाँ, मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अत। तो आइए श्रोताओं, जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपना गीत कार्यक्रम इस खमती गीत से।

दोस्तों, अक्सर हम कही सुनी बातों पर बहुत जल्दी यकीन करने लगते हैं। दोबारा हम सोचते तक नहीं हैं, फिर एक और कान में वही बातें पास कर देते हैं और इस तरह से कई बार हमें बहुत नुकसान झेलना भी पड़ता है। कहने का मतलब, जब भी कोई बात सुनते हैं तो हमें उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जैसे अभी कोविड वैक्सीन को लेकर कई बातें हो रही हैं, जैसे कि कुछ मीटर की दौड़ लगाए अगर आप हांफते हैं, थक जाते हैं, सांसें फूल जाती हैं, तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वरना ये होगा, वरना वो होगा, और इस तरह की कई अनगिनत बातें चल रही हैं। और हम सही इंसान से इस बात की सच्चाई का पता लगाने के बजाय डर के घर पर बैठ जाते हैं और एक और इंसान से यही बात पास करा के उन्हें भी डरा देते हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें नुकसान हमारा ही है। इसलिए कही सुनी बातों पर कभी भी यकीन ना करें, खुद जांच करें, पता लगाए, फिर विश्वास करें। तो आइए श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ अगला गीत है तांबो तामीन की आवाज में, तागिन की।

ये था ईदो गीत अजाती मिमी की आवाज में। जो श्रोता हमें अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अपना गीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनाते हैं अपने राज्य के गीत संगीत। दोस्तों, जब नेगेटिविटी, शक या इनसिक्योरिटी दिल में एक बार पैदा हो जाए ना, तो इसका जाना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें खोने का डर भी उतना ही होता है। और जाहिर सी बात है, जिसे हम प्यार करते हैं उसे खोने का डर तो होगा ही, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन्हें खोने के डर से हम उन पर शक करना शुरू कर दें, उनकी हर एक्टिविटीज पर शक करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम इंसान के हर एक्टिविटीज को गलत तरीके से रिलेट करना भी शुरू कर देते हैं। और अगर रिश्ता प्यार मोहब्बत या पति पत्नी का हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। शक, इनसिक्योरिटी सालों संजोए रिश्ते को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। सभी वादे वफा भूल जाते हैं और बचता है सिर्फ डर, और इस डर की वजह से चिड़चिड़ापन, फिर झगड़ा और अल्टीमेटली रिश्ता खत्म। कहने का मतलब, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, भरोसा रखना बहुत जरूरी है, मगर सामने वाले की हरकतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पर जितना हो सके खुद को पॉजिटिविटी से घेर कर रखना चाहिए। तो लीजिए प्रस्तुत है जेरी जिर्दो की आवाज में गालो गीत, जहां अपने प्यार को खोने का डर चरम सीमा पर है।

0: आप सुन रहे थे ताके रिन्यो की आवाज में आपातानी गीत, और इसी आपातानी गीत के बाद आज का अपना गीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे, और इसी आशा के साथ अपना गीत कार्यक्रम का एक और नया अंक के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे अपना गीत कार्यक्रम के साथ। हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में यानी कि 8:30 का वक्त रहेगा युवाओं के प्रोग्राम यूथ प्रोग्राम का।
0: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष, और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
2: यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा, और आप सभी युवा श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आने वाले 21 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड अल्जाइमर डे यानी विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम निवेदन करने जा रहे हैं एक विशेष संदेश, द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू अ डायमेंशिया डायग्नोसिस मैटर। इस संदेश के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्जाइमर्स और डायमेंशिया क्या है, इसके प्रारंभिक लक्षणों को समझने क्यों जरूरी है, और समय पर डायग्नोसिस और केयर किस तरह मददगार हो सकती है। इस महत्वपूर्ण संदेश को प्रस्तुत किया है डॉक्टर पीजे शर्मा जी ने, जो अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से है। उम्मीद करती हूँ उनके ये अनुभवी विचार हमारे युवा श्रोताओं को अच्छे लगेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त करने और मंथन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बिना किसी विलंब के आइए सुनते हैं डॉक्टर पीजे शर्मा जी का ये जानकारी पूर्ण और प्रेरणादायक संदेश, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2026।
3: अल्जाइमर रोग भूलने का रोग है। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण किया। अल्जाइमर रोग एक न्यूरो डिजेनरेटिव रोग है और डिमेंशिया का सबसे आम रूप है, जो लगभग 6

अल्जाइमर से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति और अन्य व्यवहार बदलने लगते हैं। इसका असर सामाजिक जीवन पर पड़ता है। समय बीतने के साथ यह बीमारी बढ़ती है और खतरनाक हो जाती है। यह याददाश्त खोने डिमेंशिया का सबसे सामान्य रूप है। अन्य बौद्धिक गतिविधियां भी कम होने लगती है, जिससे प्रतिदिन के जीवन पर असर पड़ता है। इसका कुछ चेतावनी संकेत है। याददाश्त खोना, हाल ही में सीखी गई सूचना को भूलना डिमेंशिया का सबसे सामान्य आरंभिक लक्षण है। व्यक्ति अक्सर भूलने लगता है और बाद में उसे याद नहीं कर पाता। सामान्य कामकाज करने में कठिनाई, डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति दैनिक कामकाज की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में अक्सर कठिनाई महसूस करता है। कोई व्यक्ति तो खाना बनाने में अपनाए जाने वाले कदम या टेलीफोन करने या कोई खेल खेलने में भी कठिनाई महसूस करता है। अल्जाइमर बीमारी का मरीज साधारण शब्द या समानार्थक शब्द भूलने लगता है और उसकी बोली या लिखावट अस्पष्ट हो जाती है। अल्जाइमर का मरीज अपने पड़ोसी में भी खो जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह कहाँ है, वहाँ कैसे आया और घर वापस कैसे जाना है। निर्णय लेने में कठिनाई या गलत निर्णय। अल्जाइमर का मरीज अनाप शनाप कपड़े पहन सकता है, गर्मी में बहुत से कपड़े या ठंडे में काफी कम कपड़े, जिसके निर्णय लेने का क्षमता कम होती है। वह अनजान लोगों को बहुत सारे पैसे दे सकता है। संक्षिप्त सोच में समस्या। अल्जाइमर का मरीज कठिन मानसिक कार्यों में असामान्य कठिनाई महसूस करने लगता है, जिसे वह यह नहीं समझ पाता कि कोई संख्या क्या है, क्यों है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। अल्जाइमर का मरीज चीजों को यत्र तत्र रख देता है। उदाहरण के लिए वह आयरन को फ्रिज में रख सकता है। अल्जाइमर का मरीज अपने स्वभाव में तेजी से बदलाव प्रदर्शित करता है, जिसे वह अकारण ही रोने या गुस्सा करने या हंसने लग जाता है। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति नाटकीय ढंग से बदल सकता है। वह बेहद उलझनपूर्ण, संदेह करने वाला, भयभीत या किसी परिजन पर अत्यधिक निर्भर बन जाता है। अल्जाइमर का मरीज बेहद निष्क्रिय, टीवी के सामने घंटों बैठने वाला, बहुत अधिक सोचने वाला या सामान्य गतिविधियों को पूरा करने में अनिच्छुक हो सकता है। यदि खुद में या अपने किसी परिजन में इनमें से कोई चेतावनी संकेत देखे, तत्काल किसी चिकित्सक से संपर्क करें। अल्जाइमर या डिमेंशिया पैदा करने वाली अन्य गड़बड़ियों की समय रहते पहचाने और उनका इलाज, सहयोग तथा समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। अल्जाइमर रोग के कारणों को अभी भी ठीक से समझा नहीं जा सका है। इसके विकास से जुड़ी हुई पर्यावरणीय और आनुवंशिक जोखिम कारक है। सबसे मजबूत आनुवंशिक जोखिम कारक एपोलिपोप्रोटीन ई के एलील से है। अन्य जोखिम कारकों में सिर की चोट, नैदानिक अवसाद और उच्च रक्तचाप का इतिहास शामिल है। रोग की प्रगति काफी हद तक सेरिब्रल कॉर्टेक्स में विकृत प्रोटीन जमा के संचय की विशेषता है, जिसे एमिलाइड प्लेक और न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स कहा जाता है। ये गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन समुच्चय सामान्य कोशिका कार्यों में बाधा डालते हैं और समय के साथ न्यूरॉन्स के अपरिवर्तनीय पतन और मस्तिष्क में सिनेप्टिक कनेक्शन की नुकसान का कारण बनते हैं। एक संभावित निदान बीमारी के इतिहास और संज्ञानात्मक परीक्षण पर आधारित है। निश्चित निदान के लिए मस्तिष्क के ऊतकों की जांच आवश्यक है, लेकिन यह केवल मृत्यु के बाद ही हो सकता है। कोई भी उपचार इसकी प्रगति को रोक या उलट नहीं सकता है। हालांकि कुछ अस्थायी रूप से लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। एक स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और सामाजिक जुड़ाव आमतौर पर उम्र बढ़ने में फायदेमंद होते हैं और संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। प्रभावित लोग सहायता के लिए दूसरों पर तेजी से निर्भर हो जाते हैं, अक्सर देखभाल करने वाले पर बोझ डालते हैं। दवाओं में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आर्थिक तत्व शामिल हो सकते हैं। व्यायाम कार्यक्रम दैनिक जीवन की गतिविधियों के संबंध में फायदेमंद हो सकते हैं और संभावित रूप से परिणामों में सुधार कर सकते हैं। मनोभ्रंश के कारण व्यवहार संबंधी समस्याओं या मनोविकृति का कभी कभी एंटीसाइकोटिक के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन इससे समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। 2020 तक दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोग अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे। यह अक्सर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में शुरू होता है। हालांकि 10% तक मामले प्रारंभिक शुरुआत वाले होते हैं, जो 30 से 60 के दशक के मध्य तक के लोगों को प्रभावित करते हैं। यह 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 6% लोगों को प्रभावित करता है और महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक बार प्रभावित करता है। समाज पर अल्जाइमर का वित्तीय बोझ

दोहराया है, जिसकी अनुमानित वैश्विक वार्षिक लागत 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अल्जाइमर और संबंधित मनोभ्रंश दुनिया भर में मृत्यु के सातवें प्रमुख मुख्य कारण के रूप में रैंक किए गए हैं। अल्जाइमर बीमार को आमतौर पर 3 चरणों में वर्णित किया जाता है, जिसमें संज्ञानात्मक और कार्यात्मक हानि का एक प्रगतिशील पैटर्न होते हैं। यह रोग हिप्पोकैम्पस के लक्षित करने के लिए जाना जाता है, जो स्मृति से जुड़ा होता है, और यही स्मृति हानि के शुरुआती लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, स्मृति हानि का डिग्री भी बढ़ती जाती है। माना जाता है कि अल्जाइमर रोग तब होता है जब असामान्य मात्रा में एमिलॉइड बीटा, वाइज रूप से एमिलॉइड प्लेक और टाउ प्रोटीन के रूप में या अंतःकोशिकीय रूप से न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल के रूप में मस्तिष्क में जमा हो जाता है, जिससे न्यूरोनल कार्यप्रणाली और कनेक्टिविटी प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कार्य क्षमता में प्रगतिशील हानि होती है। यह परिवर्तित प्रोटीन निकासी क्षमता उम्र से संबंधित है। कोई प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाएं अंतर्निहित कारण को व्याख्या करने का प्रयास करती है। सबसे प्रमुख परिकल्पना एमिलॉइड बीटा परिकल्पना है। देर से शुरू होने वाला अल्जाइमर लगभग 70% अनुवंशिक होता है। अल्जाइमर के अधिकांश मामले पारिवारिक नहीं होते हैं। दिन की गड़बड़ी को अल्जाइमर रोग में सूजन के लिए एक संभावित जोखिम कारक के रूप में देखा जाता है। आयोनिक, तांबा, लोहा और जस्ता जैसा बायोमेटल्स का सेलुलर होम्योस्टेसिस अल्जाइमर रोग में बाधित होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रोटीन में परिवर्तन के कारण होता है या इसका कारण बनता है। धूम्रपान अल्जाइमर रोग का एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रणालीगत मार्कर देर से शुरू होने वाले अल्जाइमर रोग के लिए जोखिम कारक है। वायु प्रदूषण का एक्सपोजर अल्जाइमर रोग के विकास में योगदान करने वाला कारक हो सकता है। रोग के शुरुआती चरणों में टेंगल्स मुख्य रूप से औसत दर्जे का टेम्पोरल लोब में मौजूद होते हैं और प्लेक मुख्य रूप से नियोकॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोग बढ़ता है, प्रभाव पूरे मस्तिष्क में फैल जाती है। आमतौर पर व्यक्ति के मेडिकल इतिहास, दोस्तों या रिश्तेदार के अवलोकन और व्यवहार में बदलाव के आधार पर नैदानिक निदान किया जाता है। कम से कम 2 संज्ञानात्मक डोमेन में हानि के साथ विशिष्ट न्यूरोसाइकोलॉजिकल परिवर्तनों की उपस्थिति, जो किसी व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमताओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त गंभीर है, निदान के लिए ये आवश्यक है। जिन डोमेन में हानि हो सकती है, उनमें स्मृति, जो सबसे अधिक हानि होता है, भाषा, कार्यकारी कार्य, विजुअल स्पेशल कामकाज या संज्ञान के अन्य क्षेत्र शामिल है। न्यूरोकॉग्निटिव परिवर्तन कार्यों के पिछले स्तर से गिरावट होनी चाहिए और निदान के लिए न्यूरोकॉग्निटिव गिरावट के अन्य सामान्य कारणों को खारिज करना आवश्यक है। स्मृति परीक्षण सहित बौद्धिक कार्य प्रणाली का आंकलन रोग की स्थिति को और स्पष्ट कर सकता है। चिकित्सा संगठनों ने अभ्यासरत चिकित्सकों के लिए निदान प्रक्रिया को आसान और मानकीकृत करने हेतु नैदानिक मानदंड बनाए हैं। निश्चित निदान की पुष्टि केवल मृत्यु के बाद के मूल्यांकन से ही हो सकती है, जब मस्तिष्क सामग्री उपलब्ध हो। हृदय संबंधी जोखिम कारक जैसे कि हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और धूम्रपान मोनोप्रॉक्स की शुरुआत और बिगड़ने के उच्च जोखिम से जुड़े हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टेरिन का उपयोग मोनोप्रॉक्स में लाभकारी हो सकता है। बिना किसी संज्ञानात्मक हानि वाले व्यक्तियों में एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक दवाएं मस्तिष्क स्वाभाविक विकृति को प्रभावित करके मोनोप्रॉक्स के जोखिम को कम कर सकती है। कुछ जीवन शैली गतिविधियाँ जैसे शारीरिक और संज्ञानात्मक व्यायाम, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक उपलब्धि, सिगरेट पीना, तनाव, नींद और मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित अन्य सहरूनताओं का प्रबंधन, ये अल्जाइमर विकसित होने के जोखिम को प्रभावित कर सकता है। शारीरिक व्यायाम मनोभंश की दर में कमी के साथ जुड़ा हुआ है और यह अल्जाइमर से पीड़ित लोगों में लक्षणों की गंभीरता को कम करने में प्रभावी है। एरोबिक व्यायामों में स्मृति और संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार किया जा सकता है, जिसमें सप्ताह में 3 बार 40 मिनट तक तेज चलना शामिल है। यह मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। मानसिक व्यायामों में भाग लेना, जैसे पढ़ना, क्रॉसवर्ड पहेलियां और शतरंज में भाग लेना, बांसुरी बजाना, इस तरीका का निवारण होने की क्षमता रखने वाला कुछ प्रयोग हो सकता है। कुछ मनोसामाजिक हस्तक्षेपों का उपयोग औषधीय उपचार के सहायक के रूप में किया जाता है और इन्हें व्यवहार, भावना, अनुभूति या उत्तेजना उन्मुख दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवहारिक हस्तक्षेप समस्याग्रस्त व्यवहारों के पूर्ववृत्त और परिणामों की पहचान करने और उन्हें कम करने का प्रयास करते हैं।

0: म्यूजिक थेरापी यानी कि संगीत चिकित्सा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। भावना उन्मुख हस्तक्षेपों में स्मरण चिकित्सा, सत्यापन चिकित्सा, सहायक मनोचिकित्सा, संवेदी एकीकरण और नकली उपस्थिति चिकित्सा शामिल है। कई बार तस्वीरों, घरेलू सामान, संगीत और ध्वनि रिकॉर्डिंग या अतीत से परिचित कुछ वस्तुओं की सहायता लिया जाता है। नकली उपस्थिति चिकित्सा लगाव सिद्धांतों पर आधारित है और उसमें अल्जाइमर वाले व्यक्ति के सबसे करीबी रिश्तेदारों की आवाज के साथ रिकॉर्डिंग बजाना शामिल है। प्रारंभिक और मध्यम चरणों के दौरान रहने के माहौल और जीवन शैली में संशोधन सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और देखभाल करने वाले का बोझ कम कर सकते हैं। अल्जाइमर रोग देखभाल करने वाले पर एक बड़ा बोझ डालने के लिए जाना जाता है, जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या आर्थिक पहलू शामिल है। रोग के अंतिम चरण के दौरान विदेश में उपचार अक्सर धर्मशाला की मदद से मृत्यु तक असुविधा से राहत देने पर केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का अध्ययन अल्जाइमर रोग की पहले से भविष्यवाणी करने के तरीके के रूप में किया जा सकता है। विश्व अल्जाइमर रिपोर्ट में निमहंस के शोध पत्र में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त मनोभ्रंश हस्तक्षेप पर जोर दिया गया है, जहाँ पे लिखा है पारंपरिक भारतीय खेल खेलना, रंगोली या कोलम बनाना और भजन गाना सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियां हैं, जिन्हें संज्ञानात्मक उत्तेजना चिकित्सा में शामिल किया गया है। भारत में डिमेंशिया से पीड़ित केवल 10% लोग की ही निदान, उपचार या देखभाल मिल पाती है। उपचार में यह बड़ा अंतर जागरूकता की कमी, कलंक, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता और पहुंच के अलावा डिमेंशिया के निदान और उपचार के लिए प्रशिक्षित बहु विषय देखभाल विशेषज्ञों की भारी कमी के कारण है। इसके अलावा एक बार निदान हो जाने के बाद रोगियों और उनके परिवारों को बहुत कम देखभाल और सहायता मिलती है। सभी राज्यों में मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकारी दीर्घकालिक और डे केयर सेंटर शुरू करने की आवश्यकता है। अभी तक केवल केरल में ही यह सुविधा उपलब्ध है। डिमेंशिया के निदान और देखभाल के कुछ पहलू सार्वभौमिक है, लेकिन डिमेंशिया की वैश्विक बोझ को कम करना वास्तव में चिकित्सा पद्धति और देखभाल के प्रासंगिक और स्थानीयकृत रूपों के माध्यम से इस बहुआयामी समस्या से निपटने पर निर्भर करता है।
1: श्रोतागण, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पीजे शर्मा का वार्ता डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अरुणाचल प्रदेश से है। उम्मीद करती हूँ उनकी ये अनुभवी विचार हमारा युवा श्रोताओं को अच्छा लगा होगा और इस संदर्भ में आप लोग मंथन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर पीजे शर्मा जी का। तो श्रोतागण, आइए चलिए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

दोस्तों आप आनंद उठा रहे थे युवाओं का कार्यक्रम के साथ और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भले ही भूले बिसरे गीत क्यों ना हो, होते हैं सदाबहार नगमों का कारवा। तो चलिए हम भी अपनी इस कारवा के शुभारंभ कर ही देते हैं आप सभी के लिए, है ना दोस्तों। कभी कभी सिर्फ मौसम नहीं बदलता, आसमान नहीं बदलता, बल्कि अपने साथ कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरी बातें और किसी खास की यादें भी ले आता है ना। तो जब हवाओं में थोड़ी नमी हो और दिल में थोड़ी सी तन्हाई, तो क्यों ना सुने वो सदाबहार नगमा जिसमें मौसम की शरारत भी है और दिल की बेचैनी भी, है ना। तो लीजिए पेशे खिदमत है बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इसी खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारी आज की जो है, जी हाँ, आज के भूले बिसरे गीतों का ये सेगमेंट अभी यहीं पर संपन्न होता है। आप इन गीतों को सुन रहे थे भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में, जिसे आप तक पहुंचाया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, बहरहाल जो है लम्हे ये सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार इस दिल में हमेशा रहेगा। फिर चाहे हम कल ही मुलाकात क्यों ना करते हो। जी हाँ दोस्तों, चलते चलते वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में हाजिर हो जाएंगे एक बार फिर कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आप सभी के जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जी हाँ दोस्तों, यूं ही अरुण एफएम पर प्यार बरसाते रहे। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें कि अगर आपका अपमान होता देख वहां कोई चुप खड़ा है तो समझ जाइए कि आपके अपमान का स्क्रिप्ट राइटर बस वही है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की मंगल कामना करते हुए हम आज की अपनी इस तीसरे प्रसारण सेवा को यहीं पर संपन्न करते हैं। और साथ ही हम बता देते हैं आज के इस सफर में आपके साथ मौजूद थे संचार निष्पादक टी तांजा, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं थी आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा। तो अब हमें रुखसत होने की इजाजत दीजिए, साथ ही आप आगे के सफर के लिए एफएम गोल्ड पर बने रहे। दोस्तों, शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद।
1: अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितम्बर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन अन्या

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है यूपीआई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया एमडीआर फ्रेमवर्क आया है उसके पांच महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान पूरी तरह से एमडीआर फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट्स 1,00,000 रुपए हर महीने है, उनके लिए 0 MDR व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शंस पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ एमडीआर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो पांच इंपॉर्टेंट पहलू जो एमडीआर के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरू।

0: कस्टमर्स प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कितने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मार्चेंट इसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा विश्व में समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा, जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मार्चेंट्स जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता। तो मैं समझता हूँ मैं जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें है उसमें आपका TPAP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, फिर उसमें एक PSP बैंक है जो कि वो दरवाजा खुलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी NPCI के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का और मर्चेंट का बैंक है जहां पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं देगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें MDR लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक्स, PSP बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, इस सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, IT में और पैसे लगाएं।
1: जी विकास जी, जब हम MDR की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि MDR का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, चूंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस MDR फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि MDR और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
0: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम IT में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनाबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, तो MDR से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे। ये MDR के जो भी पैसे इसमें मार्चेंट से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग के UPI प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना जरा 3-4 प्लेयर्स जो उसमें है। तो अब देखिए, जनधन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है 56 करोड़ लोग आ गए हैं, दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी ऑनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें UPI को अपनाएं। तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है एक कि इसको जीरो जो MDR रेट है और कुछ दिन चलता है और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है, उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये UPI के ऊपर नहीं लग रहा है
1: जी।
0: कोई शुल्क ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्चेंट, उसमें भी 1 लाख तक जो छोटे काश्तकार, छोटे MDR वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2 वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया, अगले महीने कम हो गया, 3 महीने का एवरेज दिखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा, जैसे ही बना गया है 0.04%

0: और वो 300 रुपये की सीमा है। तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सुविधा है। आप मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि एमडीआर क्या है और नए एमडीआर फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब यूपीआई लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में एमडीआर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है, सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
2: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, किसी साल 2100, किसी तो 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदी हो गए, और जो इसकी सुविधा थी, आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट यूपीआई के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है। लोगों के तीन तीन चार चार पांच पांच अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया, ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और P2P पर्सन टू पर्सन, आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो। सिर्फ वहां लगाया गया है जहां एमडीआर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहाँ सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे, हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पीओ ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे और हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास यूपीआई है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजेक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजेक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है, अभी जिस लेवल पर है तो उसमें पर ट्रांजेक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे, कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजेक्शन करें वो 300 ही रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा, और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं मर्चेंट से, छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2% 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा, तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एमडीआर का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा।

0: सरकार का कहना है कि ग्राहक से एमडीआर नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो एमडीआर का भुगतान करेगा। इस अंतर को हम कैसे समझें?
1: कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, एक ही बात है कि इसमें जो हाईवेज की अपने एग्जांपल दिया, वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, पीएसपी बैंक, पीपीएपी और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, तो कहा सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस आप करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में, एमडीआर मर्चेंट साइड चार्ज है, तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए। और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स हैं ये इसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है। अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, यूपीआई है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स देवल की, जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल ₹5 में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल ₹5 चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे एमडीआर के लिए, हो सकता है इसको और बढ़ा भी जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है, कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर एटीएम में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को। और इसके हो सकता है उसके क्यों हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा, जैसे उन्होंने कहा ना इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे। तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये ऐसा ना इट्स फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
0: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% एमडीआर वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
2: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरेक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही, क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया जी तेल तो तिलों में से निकलता है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बियर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बियर करना चाहिए, हम नहीं बियर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था एमडीआर के मामले में तो उसमें दो तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हम उनसे बैंक चार्ज लेता है 2%, 1% वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए ₹10,000 की चीज है तो आपसे वो 200-300 फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दीजिए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज ₹10,000 की है तो पहले से ही उसको ₹10,200 उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल ₹200 में जो उनको एमडीआर भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा, क्योंकि मंशा एमपीसीआई की सरकार की ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए, जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे एमडीआर के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के, अगर मैं महीने के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर

0: रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजेक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या एमडीआर का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू जीडीपी रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से ये आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या यूपीआई के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से यूपीआई पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है सीपीआई वो 4.82 आई है
1: जी।
0: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है, इसमें तो कोई हम इनसे इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है। उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन, अब मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो एमडीआर को पास ऑन नहीं करते हैं, बड़े होटल्स हैं, आप कोई लग्जरी का सामान खरीद रहे हैं, महंगा सामान खरीद रहे हैं, वो लोग उन लोगों के लिए 0.4% माइनस नहीं रखता क्योंकि उनका मार्जिन जाता है। पर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रिविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर। ये सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, यूपीआई का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए, लोगों से वसूली की जाए, ये कतई ये मंशा नहीं है। जहां तक व्यापारियों की शिकायत है, अब मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा।
1: विकास जी थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1,00,000 रुपए तक प्रति महीने यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट्स छोटे मर्चेंट्स के लिए 0 MDR फ्रेमवर्क है। आपसे समझना चाहेंगे कि 1,00,000 की ही सीमा क्यों रखी गई, क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा, और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए यूपीआई की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी?
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपकी 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 crores नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का सब हम जब जितने भी इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1,00,000 का उन्होंने सीमा लगाया है, मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1,00,000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपये दिन में हो गया, तो इस हिसाब से उसका 1,00,000 रुपये थोड़ा सा कम लग रहा है, हो सकता है इसको सरकार रिव्यू करेंगे और इसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा। पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आपके रेलवे टिकट है और इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज है 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो यूपीआई पर एमडीआर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है, पर यूपीआई को फ्री रखना बहुत अच्छा था लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए, आगे चल के और बढ़ेंगे, तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है, तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट में सहूलियत रहेगी
1: जी।
2: बाकी यूपीआई का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय, और ये कोई भी आदमी पूरी कैश इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मर्चेंट्स, बट आई थिंक विदिन ए पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे
1: जी। शरद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है, हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है, ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईज के लिए जो सुविधाएं हैं क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और

0: किस तरीके का होगा?
1: नहीं, मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है। बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड, कन्वीनियंट, फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके। मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था, 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था, पहले आदि हो गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है। तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके। बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था, जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं। तो ये सदा के लिए कैसे ये निःशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है, एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं, ओवरऑल ना देखूं, और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई को मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं, और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं आप देखें, ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का, तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि यहां तो वो कहते हैं जी यहां तो सब निःशुल्क है, तो हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
0: जी,
1: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, और वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है, वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही
2: है। ना केवल बिजनेस बढ़ा है, उसमें देखिए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
0: जी,
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे, लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, ये केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, विच इज फुल प्रूफ
0: जी।
2: तो ये भी है, 6.5 करोड़ मार्चेंट्स आपके जुड़ गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का और उनको स्कोप मिल रहा है
0: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि MDR कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। UPI का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी, और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे UPI भुगतान में MDR की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंक

0: बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कुल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बजट तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचों को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल होने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे एक

अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी सहित 18 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने में उद्योग जगत से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भारत की क्षमता पर भरोसा जताया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा, भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक उपलब्धि। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया और भारत ने सऊदी अरब में मक्का के पास ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक 93-29 मतों से पारित किया गया। व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब के निवेश पर भी सहमति जताई है। इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना का लक्ष्य प्राप्त करना भी है। थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ की रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दविजेव के साथ सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा निर्धारित है। मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे।

0: और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। सेना प्रमुख मॉस्को में टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। भारत से लगभग 4000 मीट्रिक टन या 47 लाख लीटर डीजल दीनाजपुर के पार्वतीपुर रिसीविंग टर्मिनल डिपो में पहुंच चुका है। यह भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया गया है। वर्ष 2018 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश ने 15 वर्ष में लगभग 2 मिलियन टन डीजल आयात करने पर सहमति जताई थी। मार्च 2023 में पाइपलाइन का उद्घाटन होने के बाद से बांग्लादेश ने इनके माध्यम से 3,30,087 टन डीजल आयात किया है। ईंधन को 3 सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पद्मा ऑयल, मेघना पेट्रोलियम और जमुना ऑयल के बीच लगभग समान रूप से वितरित किया जाता है। नेपाल के उत्तरी पश्चिमी मुगुर जिले में आज तड़के 3 घंटे के भीतर 2 भूकंप आए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 और दूसरे की 4.2 थी। दोनों भूकंपों का केंद्र मुगुर जिले के कलई के आसपास रहा। फिलहाल किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। यह गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा नागरिकों को जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर मानवाधिकार संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। बलूच नेशनल मूवमेंट BNM के मानवाधिकार विभाग पाक ने बताया कि बलूचिस्तान प्रांत में एक और नागरिक को जबरन गायब कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नई घटना पूरे प्रांत में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब करने की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई है। तुर्बत के मुल्लाही बाजार निवासी फदह अनवर को 19 अगस्त की रात जबरन गायब कर दिया गया था। पिछले महीने बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन पांक ने बताया था कि सद्दाम बुगती को 29 अगस्त को डेरा बुगती जिले के नवाब बाजार इलाके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवाद निरोधक विभाग CTD ने अगवा किया था। एक अन्य घटना में 26 अगस्त को उसी इलाके से CTD और पाकिस्तान पुलिस द्वारा 2 मजदूरों को अगवा किया गया था। 30 अगस्त को बलूच महिला मंच ने बलूचिस्तान के केच जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा नाबालिग लड़कियों सहित नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गैर न्यायिक हत्याओं और अज्ञात शवों की रिपोर्टों पर चिंता जताई है और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने, यातना और गैर कानूनी हत्याओं के व्यापक पैटर्न के बारे में भी चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: सऊदी अरब ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणाली ने कल शाम मक्का के पास एक हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। यमन सरकार के समर्थन वाले गठबंधन सेनाओं के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने इस हमले को मक्का को निशाना बनाने की हौसियों की दूसरी कोशिश बताया। उन्होंने वर्ष 2017 में हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले का भी उल्लेख किया। मेजर जनरल अल मलिकी ने कहा कि ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ गठबंधन आवश्यक कदम उठाएगा। हालांकि हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि भारत सऊदी अरब की भूमि पर हमलों, नागरिकों के जीवन और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व वाले शहर मक्का के नजदीक यह घटना चिंताजनक है। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने का आग्रह किया। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूलन तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने में उद्योग जगत से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भारत की क्षमता पर भरोसा जताया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक उपलब्धि। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया और भारत ने सऊदी अरब में मक्का के पास ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने का आग्रह किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।